सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 MHz पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

ज्ञान ज्योति। ईश्वर द्वारा दिया गया मानव शरीर और आत्मा इस जीवन को गति प्रदान करते हैं। मानव जीवन की सुंदरता धर्म और उसके द्वारा किए गए कार्य से ही परिपूर्ण होती है। धर्म जब कार्य के साथ मिलता है तो कर्म कहलाता है, और हमारे द्वारा किया गया कर्म सदैव एक पवित्र सोच का परिचायक होना चाहिए। धर्म मानव का आत्मिक पक्ष है तो कर्म शारीरिक। धर्म अपने मूल रूप में शाश्वत है और कर्म अपने क्रियात्मक रूप में व्यावहारिक है। अतः हम मनुष्य को सदैव जीवन यापन करने के लिए धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। ज्ञान ज्योति।

शक्कर को अंधेरे में खाएं तब भी मुंह मीठा ही होता है। उसी प्रकार सत्कर्म को आप अनजाने में भी करें तो उनका फल मीठा ही होता है।

आलस, लोभ, क्रोध, मोह मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। अतः मनुष्य को इन विकारों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और सदैव प्रेम का मार्ग अपनाते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए।

भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए अब लगाते हैं माता रानी के दरबार में हाजिरी।

भक्ति गीतों के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का भाग 32।

शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिव जी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का भाग 32। गायक कलाकार थे शिप्रा बोस और साथी। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए आज हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। जी, कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर आप सुनते हैं रोजाना 7:05 पर। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हिमाचल डायरी का अंक आप सुनते हैं रोजाना 8:30 पर। 8:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। 8:45 पर आप सुनेंगे कानून की बात आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 9:00 आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। 9:20 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। 10:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लघु वार्ता आप सुनते हैं रोजाना 10:05 पर। 10:15 पर आप सुनेंगे सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। पहाड़ी बोली में कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे 10:45 पर। 11:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 11:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर 12:00 एक बार फिर आपके मनोरंजन के लिए हाजिर होंगे महिलाओं का खास कार्यक्रम वनिता मंडल आप सुनेंगे दोपहर 12:00। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुनते हैं रोजाना 12:30 पर। 1:00 आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। मिड डे न्यूज आप सुनेंगे 2:00। दोपहर समाचार का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे 2:15 पर। 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। 3:00 आप सुनते हैं रोजाना प्रादेशिक समाचार। 3:05 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। 3:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। शाम 5:00 एक बार फिर आपके मनोरंजन के लिए हाजिर होंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार आप सुनेंगे शाम 5:00। भजन संध्या कार्यक्रम आप सुनते हैं रोजाना 5:05 पर। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवमंच सुनते हैं रोजाना 5:30 पर। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:00। सफ़र सुहाने गाने नए पुराने आप सुनते हैं रोजाना शाम 6:05 पर। खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार आप सुनेंगे 7:00। फिल्मों से भजन भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:05 पर। रौनक का ग्राइंदियां कार्यक्रम आप सुनते हैं 7:25 पर। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। फ़ोन करें गीत सुने आप सुनेंगे रात्रि 8:00। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या का अंक और news@9 आप सुनेंगे रात्रि 9:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात्रि 10:00। रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। 6:55 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7:00 हिंदी में समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स् देशस्य राष्ट्रियदिवसस्य स्वर्णजयन्तीसमारोहे मुख्य अतिथिरूपेण भागं गृहीतवान् भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी सेशल्स् देशस्य नागरिकेभ्यः भारतपरं वर्धापनं प्रकटितवान् विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन सम्बलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस देशस्य समकक्षेन डॉ नवीनचन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान् द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम् आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडीनगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं एककोटि पञ्चाशत् लक्ष रूप्यकेषु विक्रीतवान् आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुञ्च 10 दिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन् अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः षोडशे सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
2: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
4: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
5: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
4: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
5: भाभी चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
6: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
7: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
9: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
7: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
9: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
7: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 7:06 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

जी सुप्रभात। हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो हमसफर बबीता। बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपना और अपनों का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। और देखिए ना, पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और कल की इस बारिश की हल्की हल्की फुहारों ने, हल्की हल्की बौछारों ने मौसम में थोड़ी सी करवट ला दी है, मौसम में थोड़ी सी राहत आ गई है और मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया है, राहत आई है और हमें भी थोड़ी सी चैन की सांस आई है। और अगर इसी बात को हम अपने जीवन के साथ जोड़ें, आज के विचार के साथ जोड़ें, तो दोस्तों जीवन का सफ़र भी यही कहता है कि जीवन में बदलाव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में हम सभी किसी न किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। रोज़ हम एक नए संकल्प के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। कभी सफलता एकदम हाथ लग जाती है तो कभी असफलता का दामन भी देखना पड़ता है, असफलता का भी सामना करना पड़ता है। पर दोस्तों, सफलता असफलता के इस ताने बाने में हमें हिम्मत, धैर्य और विश्वास का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खुद पर भरोसा ही हमें सपनों के करीब लेकर जाता है। हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास ही लक्ष्य के पास हमें लेकर जाते हैं। और दोस्तों, जब कोशिश रोज़ की आदत बन जाए तब जीत खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ लेती है। और अब हम भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं ये गीत।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
5: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: जी, कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। सिकंदर बेग ने 1444 में ऑटोमन साम्राज्य की सेना को आज ही के दिन हरा दिया था। विलियम शेक्सपियर का ग्लोब 1613 में थिएटर आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गया था। इवान विहोस्की के नेतृत्व वाली यूक्रेन की सेना ने 1659 में प्रिंस त्रुबेत्स्कॉय के नेतृत्व में रूसी सेना को कोनोटोप युद्ध में पराजित किया था आज ही के दिन। यूनान सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया और उस्मानी शासन के साथ बुल्गारिया का युद्ध 1913 में आज ही के दिन आरंभ हुआ था, जो दूसरे बाल्कान युद्ध के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ और चीन ने 1932 में अनाक्रमण संधि पर आज ही के दिन हस्ताक्षर किए थे। BBC के अध्यक्ष ने 1960 में आज ही के दिन घोषणा की थी कि संस्था का नया टेलीविज़न केंद्र टेलीविज़न जगत की दुनिया का हॉलीवुड होगा। मारिया इस्तेला इसाबेल

मार्टिनेज डी पेरोन ने 1974 में अर्जेंटीना की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर आज ही के दिन शपथ ली थी। सीशेल्स द्वीप समूह को 1976 में स्वतंत्रता मिली, इसके बाद से ये दिन इस देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व की प्रमुख कंपनी IBM द्वारा विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर आज ही के दिन सन 2000 में निर्मित किया गया था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कोलोनोस्कोपिक उपचार शुरू होने की वजह से उपराष्ट्रपति डिक चेने ने 2002 में 2.5 वर्ष तक कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यभार आज ही के दिन संभाला था। पूर्वी एशिया सम्मेलन जकार्ता 2004 में आसियान को प्रमुख ताकत बनाने की सहमति पर अपनी सहमति दर्ज की। भारत और अमेरिका में 2005 को समग्र 10 वर्षीय समझौता आज ही के दिन किया गया था। आईफोन के नाम से जाना जाने वाला एप्पल का पहला स्मार्टफोन सन 2007 में आज ही के दिन बाजार में आया था। सचिन तेंदुलकर ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फ्यूचर कप के दूसरे मैच में आंद्रे नेल की गेंद पर वनडे करियर के 15,000 रन पूरे किए थे। भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीता था। कैलिफोर्निया ने 2013 में आज ही के दिन समलैंगिक विवाह पर रोक हटाई थी। साइना नेहवाल ने 2014 में ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज आज ही के दिन जीती थी। और अब बात करते हैं आज के दिन जन्म हुए कुछ व्यक्तियों के बारे में। हिंदी के पहले तिलिस्मी लेखक देवकी नंदन खत्री का जन्म आज ही के दिन 1861 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद PC महालनोबिस का जन्म आज ही के दिन 1893 में हुआ था। भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म भी आज ही के दिन सन 1901 में हुआ था। और अब बात करते हैं आज के दिन निधन हुए व्यक्तियों के बारे में। तो भारतीय साहित्यकार पत्रकार मेहता लज्जाराम का निधन आज ही के दिन 1931 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और पहले रक्षा मंत्री रहे सरदार बलदेव सिंह का निधन भी आज ही के दिन 1961 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ दामोदर धर्मानंद कुंसाबी का निधन भी आज ही के दिन 1966 में हुआ था। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन भी आज ही के दिन 1988 में हुआ था। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। और अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी, कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। जी, आज देखिए 29 जून है और आज भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस देश के सबसे प्रभावशाली सांख्यिकीविदों और योजनाकारों में से एक थे। भारत सरकार द्वारा 2007 में स्थापित ये दिवस शासन, आर्थिक नियोजन, सार्वजनिक नीति और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सांख्यिकी के महत्व को उजागर करता है। ये महालनोबिस के भारत के सांख्यिकी संस्थानों में किए गए अग्रणी योगदान को भी मान्यता देता है और राष्ट्रीय विकास में विश्वसनीय आंकड़ों की भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। जानकारी दें आपको, प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे? तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को कलकत्ता में हुआ था। वे एक वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद थे जिन्होंने भारत में डेटा संग्रह और विश्लेषण में अग्रणी योगदान दिया। उन्होंने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और सांख्यिकी अनुसंधान और राष्ट्रीय योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महालनोबिस ने कई सांख्यिकी पद्धतियाँ विकसित की जो आज भी उपयोग में हैं। उनके कार्य में सार्वजनिक प्रशासन और विकास नियोजन के लिए डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने हेतु एक सशक्त ढांचा तैयार करने में मदद की। भारत के सांख्यिकी संस्थानों में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं अगर उनके योगदान की बात की जाए तो सबसे पहला उन्होंने जो योगदान दिया वो था महालनोबिस दूरी। उन्होंने महालनोबिस दूरी की अवधारणा पेश की जो डेटा समूहों के बीच समानता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सांख्यिकी माप है। इस अवधारणा का उपयोग डेटा विज्ञान, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और मशीन लर्निंग में आज भी किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की बात करें तो उन्होंने 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वेक्षण प्रणाली को वैज्ञानिक नमूनाकरण विधियों के माध्यम से पूरे देश से विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया था। महालनोबिस मॉडल की अगर बात करें तो महालनोबिस मॉडल भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा बन गया था। इस मॉडल में पूंजीगत वस्तु उद्योगों और दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर जोर दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में भारत में आर्थिक नियोजन पर उनके विचारों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनका मानना था कि सांख्यिकी प्रमाणों के आधार पर ही सार्वजनिक नीति और विकास रणनीतियों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। भारत में अगर सांख्यिकी और इसके महत्व की अगर बात की जाए तो भारत में शासन और विकास में सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्वसनीय आंकड़े सरकारों को सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को समझने और प्रभावी कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने में मदद करते हैं और इनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग ऐसे शामिल हैं: आर्थिक विकास का मापन, मुद्रास्फीति और रोजगार की निगरानी, सार्वजनिक व्यय की योजना बनाना, स्वास्थ्य और शिक्षा परिणामों का आकलन करना और साथ ही सरकारी स्कूलों का मूल्यांकन करना। वहीं भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI की अगर बात करें तो 1931 में महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। इसकी शुरुआत प्रेसिडेंसी कॉलेज के भौतिक विभाग में एक छोटी सांख्यिकी प्रयोगशाला के रूप में हुई थी। दशकों के दौरान ये सांख्यिकी अनुसंधान और शिक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी केंद्रों में से एक बन गया। साथ ही उन्होंने 1933 में सांख्यिकी यानी कि भारतीय सांख्यिकी पत्रिका की भी स्थापना की। ISI को 1959 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। इसे सांख्यिकी में डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया गया था, जिसमें बी स्टैट, एम स्टैट और PhD शामिल हैं। साथ ही महलनोबिस ने भारत में सांख्यिकी प्रणाली में बहुत अधिक सुधार किए। उनकी उपलब्धियों में शामिल है 1933 में भारत की पहली सांख्यिकी पत्रिका सांख्य का प्रकाशन हुआ। साथ ही 1937 में बंगाल में जूट की फसल के क्षेत्रफल और उपज का अनुमान लगाने के लिए पहली बार यादृच्छिक नमूनाकरण का प्रयोग किया गया था। साथ ही 1938 में प्रथम भारतीय सांख्यिकी सम्मेलन आयोजित किया गया। 1941 में कोलकाता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर सांख्यिकी पाठ्यक्रम शुरू किए गए और 1949 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी इकाई की स्थापना की गई। 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS शुरू किया गया और 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO का गठन हुआ। तो दोस्तों, ये थी जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस में, जिसमें प्रशांत चंद्र महलनोबिस ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और कोई भी दिन विशेष जो होता है श्रोताओं, वो उस महान वैज्ञानिक और कलाकार को समर्पित होता है। तो ये दिन जो है वो महान प्रशांत चंद्र महलनोबिस को समर्पित है और हमें भी हमेशा इनको याद करते रहना चाहिए। और अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक गीत।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी
0: हाँ
4: आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना।
7: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
9: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स
7: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण
9: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी
7: UGC से मान्यता प्राप्त हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
10: जी कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर और अंतराल से पहले जो आपने गीत सुना उसे लिया गया था फिल्म प्यासा सावन से। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर और साथी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। सेशेल्स में बोले मोदी हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स दौरे का संदेश स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम पास पास नहीं साथ साथ चलें। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा हमारा लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना है। इससे पहले सेशेल्स ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया। उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल्स के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। अगली खबर की बात करें तो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने श्रीखंड यात्रा के बाद अब किन्नौर कैलाश यात्रा को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। तापमान बढ़ने से यात्रा मार्ग पर हिमखंड गिरने और भूस्खलन के खतरे की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। ये यात्रा 1 से 30 जुलाई तक प्रस्तावित थी। प्रशासन को विशेष टोही दल ने इसकी रिपोर्ट दी है। 12 जून को राजस्व बागवानी जनजातीय विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में यात्रा मार्ग की सुरक्षा को लेकर निर्णय लिए गए। इसके बाद मार्ग की सुरक्षा और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक टोही दल का गठन किया गया। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की देखरेख में इस दल को 21 जून को मार्ग के निरीक्षण के लिए भेजा। दल ने अपनी रिपोर्ट में यात्रा मार्ग पर संवेदनशील और खतरनाक स्थितियों पर प्रकाश डाला है। टोही दल की रिपोर्ट में यात्रा मार्ग पर कई गंभीर खतरों का उल्लेख है। मिलिंग खाटा से शिवलिंग तक बड़े ग्लेशियर और उन पर अस्थिर चट्टाने मौजूद हैं। तापमान बढ़ने से बर्फ पिघल रही है जिससे चट्टाने अस्थिर होकर भूस्खलन का खतरा बढ़ा रही हैं। किन्नौर के उपायुक्त ने बताया कि प्राकृतिक खतरों को देखते हुए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का सर्वोपरि ध्यान रखा गया है, इसलिए किन्नौर कैलाश यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि HPU ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा PG डिप्लोमा और मेरिट आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया है। डीन ऑफ स्टडीज़ कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कुलपति की मंजूरी के बाद काउंसलिंग और साक्षात्कार का शेड्यूल तय किया है। नियमित शिक्षण कार्य 27 जुलाई से शुरू होगा। 6 से 9 जुलाई तक विभिन्न विषयों में काउंसलिंग होगी। 10 जुलाई को मेरिट आधारित पर शॉर्ट टर्म ऑन स्किल डेवलपमेंट और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग होगी। इनमें मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, पर्यावरण विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, भारतीय ज्ञान परंपरा, मानवाधिकार और वैदिक गणित जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसी दिन जर्मन, रूसी लोक साहित्य, भोटी भाषा और बायोटेक्नोलॉजी के डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ PG डिप्लोमा इन तबला, प्राचीन भारतीय गणित और पॉपुलेशन स्टडीज़ की काउंसलिंग भी होगी। 13 जुलाई को योग डिप्लोमा और जनजातीय अध्ययन और आपदा प्रबंधन में PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग होगी। गैर अनुदानित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया 18 जुलाई तक पूरी होगी। विश्वविद्यालय ने प्रवेश की अंतिम तिथि 25 जुलाई तक तय की है। कुलपति की विशेष अनुमति से 31 जुलाई तक प्रवेश दिया जा सकेगा। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिलने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन BCCI की तर्ज पर सोमवार से चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन करने जा रहा है। प्रतियोगिता का आगाज धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में महिला वर्ग की रेड और ब्लू टीम के बीच होने वाले मुकाबले से होगा। पुरुष वर्ग का मुकाबला रेड और ब्लू टीमों के बीच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। चैलेंजर ट्रॉफी 29 जून से 11 जुलाई तक धर्मशाला में होगी। महिला वर्ग की 3 और पुरुष वर्ग की 5 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी माहौल में अपनी प्रतिभा साबित करने का अवसर मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में प्रदेश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। टूर्नामेंट के दौरान चयनकर्ताओं की नज़र खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भविष्य में राज्य स्तरीय टीमों के चयन में लाभ मिल सकता है। पुरुष वर्ग में रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और पर्पल जर्सी वाली टीमें मैदान में उतरेंगी। वहीं महिला वर्ग में रेड, ब्लू और येलो जर्सी वाली टीमों के बीच मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। महिला और पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले 11 जुलाई को होंगे। वहीं अगली खबर की बात करें तो स्पीति की तंजीन नॉर्डन ने 17 वर्ष की उम्र में कनीमो चोटी पर फहराया तिरंगा। जी, स्पीति घाटी की 17 वर्षीय तंजीन नॉर्डन ने साहस, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम के दम पर 19,587 फीट ऊंची कनीमो चोटी को फतह कर इतिहास रच दिया है। कम उम्र में हासिल की ये उपलब्धि न केवल तंजीन के परिवार बल्कि पूरे लाहौल स्पीति और हिमाचल के लिए गर्व का विषय है। परिवार ने तंजीन की उपलब्धि पर खुशी जताई है। उन्होंने उसे तंजीन की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया है। तो श्रोताओं, ये थी आज की कुछ खास खबरें जो हमने आपके साथ साझा की। लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
6: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
7: जी, कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। और अब बात करते हैं आज की कुछ खास खेल खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर है, भारतीय शटलर किदांबी श्रीकांत ने पहली बार यूएस ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 33 वर्षीय श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के चौथे सीड युदाई ओको मोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से मात दी। इसी सीजन में श्रीकांत का यह पहला फाइनल है। अब फाइनल में उनका सामना ताइवान के सू ली यांग से होगा, जिन्होंने भारत के रौनक चौहान को 21-17, 21-19 से हराया। अगली खबर की बात करें तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप दो के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट से मात दी। इस हार के साथ ही गत चैंपियन न्यूजीलैंड का सफर खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ ने किस्मत के सहारे सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। जीत के लिए 164 रनों का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 16 गेंदें शेष रहते ही 164 रनों पर 1 विकेट खोकर स्कोर बनाकर लक्ष्य हासिल किया। ये टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़े सफल रन चेज की बराबरी भी है। डैनी व्याट हॉज ने 53 गेंदों में नाबाद 79 रन की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने सोफिया डंकले के साथ दूसरे विकेट के लिए 128 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी की। अगली खेल खबर की बात करें तो फीफा विश्व कप में अजय रथ पर सवार इंग्लैंड ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में पनामा को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ हैरी केन की टीम लगातार दूसरे फुटबॉल महाकुंभ में अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट स्टेज पर पहुंच गई। टीम ने 2 मैच जीते और 1 ड्रॉ खेला। पनामा के खिलाफ मैच में कप्तान हैरी केन और युवा मिडफील्डर जूड बेलिंगम ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद 62वें मिनट में कोने से मिले और मौके पर बेलिंगम ने मैच का पहला गोल किया। सिर्फ 6 मिनट बाद बेलिंगम ने शानदार क्रॉस किया, जिसे कप्तान केन ने हेडर से गोल में बदल दिया। इसी के साथ केन विश्व कप इतिहास में इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने गैरी लाइनकर को पीछे छोड़ दिया। वहीं 22 वर्ष 363 दिन की उम्र में बेलिंगम 1966 के बाद से विश्व कप मैच में गोल और असिस्ट करने वाले इंग्लैंड की सबसे युवा खिलाड़ी बने। तो श्रोताओं, ये थी आज की कुछ खास खेल खबरें जो हमने आपके साथ साझा की। और अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

जी आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में गाए इसी गीत के साथ आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम संपन्न करने की लेते हैं अपनी श्रोताओं से अनुमति और चलते चलते एक बार फिर आपको बोलेंगे सुप्रभात हमीरपुर। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 8 बजने को है। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर

0: में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।

0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 07 01123741 0112371 07 06 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू, कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्ता ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिमाचल डायरी का आज का अंक। हिमाचल डायरी के आज के अंक में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने श्रीखंड यात्रा के बाद अब किन्नौर कैलाश यात्रा को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। तापमान बढ़ने से यात्रा मार्ग पर हिमखंड गिरने और भूस्खलन के खतरे की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। ये यात्रा 1 से 30 जुलाई तक प्रस्तावित थी। प्रशासन को विशेष टोही दल ने इसकी रिपोर्ट

उड़ी है। 12 जून को राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में यात्रा मार्ग की सुरक्षा को लेकर निर्णय लिए गए। इसके बाद मार्ग की सुरक्षा और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक टोही दल का गठन किया गया। दल ने अपनी रिपोर्ट में यात्रा मार्ग पर संवेदनशील और खतरनाक स्थितियों पर प्रकाश डाला। टोही दल की रिपोर्ट में यात्रा मार्ग पर कोई गंभीर खतरों का उल्लेख है। मिलिंग खाटा से शिवलिंग तक बड़े ग्लेशियर और उन पर स्थिर चट्टानें मौजूद हैं। तापमान बढ़ने से बर्फ पिघल रही है, जिससे चट्टानें अस्थिर होकर भूस्खलन का खतरा बढ़ा रही हैं। किन्नौर के उपायुक्त ने बताया कि प्राकृतिक खतरों को देखते हुए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि माना है, इसलिए किन्नौर कैलाश यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर, व्यावसायिक डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और मेरिट आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया है। डीन ऑफ स्टडीज़ कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कुलपति की मंजूरी के बाद काउंसलिंग और साक्षात्कार का शेड्यूल तय किया है। नियमित शिक्षण कार्य 27 जुलाई से शुरू होगा। 6 से 9 जुलाई तक विभिन्न विषयों में काउंसलिंग होगी। 10 जुलाई को मेरिट आधारित पर शॉर्ट टर्म ऑन स्किल डेवलपमेंट और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग होगी। अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश के महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिलने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन BCCI की तर्ज पर सोमवार से चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन करने जा रहा है। प्रतियोगिता का आगाज धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में महिला वर्ग की रेड और ब्लू टीम के बीच होने वाले मुकाबले से होगा। पुरुष वर्ग का मुकाबला रेड और ब्लू टीमों के बीच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। चैलेंजर ट्रॉफी 29 जून से 11 जुलाई तक धर्मशाला में होगी। महिला वर्ग की 3 और पुरुष वर्ग की 5 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। पुरुष वर्ग में रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और पर्पल जर्सी वाली टीमें मैदान में उतरेंगी। वहीं महिला वर्ग में रेड, ब्लू और येलो जर्सी वाली टीम के बीच मुकाबला होगा। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। महिला और पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले 11 जुलाई को होंगे। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में उमस भरी गर्मी से 4 जिलों में हल्की राहत मिली है। रविवार को सोलन शहर, सिरमौर के नाहन, कांगड़ा के धर्मशाला और ऊना के हरोली में बादल बरसे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य में अगले एक हफ्ते में मानसून के पहुंचने की संभावना जताई है। 1 से 4 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी, तूफान और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर रविवार को शिमला में बादल छाए रहे, दोपहर बाद बूंदाबांदी हुई। हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी चिलचिलाती गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है। 1 से 4 जुलाई तक कई हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। उसके बाद 2-3 दिनों में यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों के अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण पूर्वी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार 29 और 30 जून तक हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 1 से 4 जुलाई तक मैदानी, निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल डायरी के आज के अंक में बस इतना ही। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। 8:35 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: बावरे मन की मल्हार में भीगता ये गीत जॉली LLB 2 फिल्म से आपने सुना। जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजें थीं, जुनैद वसी के बोल थे और चिरंतन भट्ट का संगीत था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब सुनते हैं आयुष्मान खुराना और नीति मोहन का गाया हुआ नौटंकी साला फिल्म का गाना।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से।
2: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से कानून की बात।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात। इसमें आपको सुनवा रहे हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015 विषय पर श्रीमती शीतल शर्मा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से गिरेंद्र सी ठाकुर की भेंटवार्ता। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया जा रहा है।
1: कानून की बात के आज के अंक में सभी श्रोताओं को मेरा यानी गिरेंद्र सिंह ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आपको विदित है कि इस कार्यक्रम में हम कानून की अनेक विधाओं के बारे में बात करते हैं, तो आज हम ऐसी ही एक कानून विधा के बारे में बात करेंगे जिसका विषय है किशोर न्याय अधिनियम 2015। और इस विषय में जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु आकाशवाणी के स्टूडियोज में मौजूद हैं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शीतल शर्मा। तो शीतल जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 किस प्रकार का अधिनियम है और इसका मुख्य उद्देश्य एवं मूल भावना किस प्रकार की है, क्या है?
2: किशोर न्याय अधिनियम, जिसको हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 भी कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार और पुनर्वास के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है।
1: जी,
2: इसकी मूल भावना यह है कि 18 वर्ष से कम आयु के उन सभी व्यक्तियों पर यह लागू होती है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है या जो कानून का उल्लंघन करते हैं।
1: जी, तो इस अधिनियम के अनुसार जो है कानून से संघर्षरत बालक किसे कहा जाता है, आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे?
2: अधिनियम के अनुसार जो कानून से संघर्षित बालक है उसको हम जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ भी कहते हैं। उसका अर्थ है उस बच्चे से जिसने किसी प्रकार का कोई अपराध किया हो या जिसपे किसी अपराध करने का आरोप हो, लेकिन इसमें 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक शामिल है।
1: जी, तो मैम अब प्रश्न उठता है कि व्यस्क अपराधियों की तुलना में जो है किशोरों के मामले की सुनवाई की प्रक्रिया जो है किस प्रकार भिन्न रहती है?
2: देखिए, जब हम व्यस्क की बात करते हैं तो उनको जब अरेस्ट करते हैं तो उनके राइट्स डिफरेंट होते हैं। अरेस्ट करने के बाद में उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन जो किशोरों के मामले होते हैं उसमें जो सुनवाई होती है वो एक विशेष प्राधिकरण करता है जिसको हम किशोर न्याय बोर्ड यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्यस्कों के विपरीत किशोरों को जो पुलिस है वो लॉकअप या जेल में नहीं रख सकती है और प्रक्रिया पुनर्वास उन्मुख होती है, यानी कि उनकी जो प्रोसेस होती है वो रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस होती है जिसमें किशोर की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि यानी कि उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर विचार किया जाता है, बोर्ड विचार करता है इसमें, और उन्हें या तो माता पिता के संरक्षण की देखरेख में सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है ना कि नियमित जेल में रखा जाता है।
1: जी, इस अधिनियम में जो है किन किन मूलभूत सिद्धांतों को विशेष महत्ता दी गई है?
2: इस अधिनियम में बच्चों के सर्वोत्तम हित यानी कि बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, उनकी गरिमा, सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी भागीदारी इन्वॉल्वमेंट, तो जो सोशल स्ट्रक्चर है, उनसे गैर भेदभाव यानी कि इक्वालिटी के साथ और अन्य बाल केंद्रित सिद्धांतों को महत्व दिया गया है। इसमें जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब कि जब तक आपने आपको गिल्टी नहीं ठहरा दिया जाता है तब तक हम लोग मानते हैं कि आपने किसी तरह का कोई भी अपराध नहीं किया है, पहले इनका प्रिंसिपल है। दूसरा होता है कि उनकी डिग्निटी और वर्थ को मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन है, उनका बेस्ट इंटरेस्ट मैंने आपको बताई दिया, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद में उनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान दिया जाता है, उनको पॉजिटिव मेजर के बारे में ध्यान दिया जाता है।
1: जी, तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उसमें जो है बच्चे की जो है बेचारी क्षमता, उस प्रकार की उसकी भावनाएं आहत ना हो,
2: सर्वोत्तम हित और उसकी गरिमा को ध्यान में रखें,
1: तो इन बातों पर जो है गौर किया जाता है ताकि जो है आने वाले समय में एक अच्छा नागरिक
2: अच्छा नागरिक बने।
1: जी, तो शीतल जी, यदि किसी नाबालिग पर अपराध का आरोप लगता है तो प्रारंभिक कानूनी प्रक्रिया क्या रहती है?
2: प्रारंभिक प्रक्रिया में किशोर को पकड़ने पर उसे 24 घंटे के भीतर किशोर को न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना शामिल है। पुलिस उन्हें हवालात में नहीं रख सकती है। मामले की गंभीरता के आधार पर बोर्ड उन्हें जमानत पर छोड़ सकता है या या एक परिवीक्षा अधिकारी जिसको प्रोबेशन ऑफिसर भी कहते हैं कि देखरेख में रख सकता है जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती है। मतलब उनको किसी भी हालात में किसी भी हवालात में नहीं रखा जाता है।
1: जी तो शीतल जी, जैसे महिलाओं के उत्थान हेतु अनेक बोर्ड एवं संस्थाएं बनी होती हैं, तो क्या किशोरों के उत्थान हेतु भी कोई इस प्रकार का बोर्ड बना होता है? यदि हाँ तो किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका क्या है और किस प्रकार की रहती है?
2: किशोर न्याय बोर्ड, जिसको कि हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं, कानून से संघर्षित बच्चे जिनको हम कहते हैं जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, से संबंधित मामलों को संभालने वाला प्राथमिक प्राधिकरण है। बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच करता है और बच्चे के संबंध में उचित आदेश पारित करता है।
1: जी आपने मैम एक शब्द का उपयोग किया, संघर्षरत बालक, तो क्या कानून में संघर्षरत बालक को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है? यदि हाँ तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि ये जो है अधिकार इसका है और इसको पूरा किया जाए?
2: जी हाँ, कानून से संघर्षित बच्चे यानी कि जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो भी होते हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता का हकदार बनाया गया है। उनको विधिक सहायता जो है वो कानून सहायता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको कहते हैं, मिलती है। विशेषकर यदि वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के मानदंडों को पूरा करता है। फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ये सुरक्षित करने में मदद करते हैं कि बच्चों को कानूनी सहायता दी जाए।
1: जैसा आपने मैम बताया कि किशोरों को जो है पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा जा सकता है, तो ऐसे में जो उनको कहाँ रखा जाता है? कोई बाल सुधार गृह में रख सकते हैं या कोई और सुधार गृह होता है?
2: किसी भी किशोर या बालक को उनको पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता, ना ही उसे जेल भेजा जा सकता है। उन्हें किशोर न्याय बोर्ड यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो उनके समक्ष जब उनको भेजा जाता है, लेकर जाते हैं, तो वो उनको एक सुरक्षित स्थान जैसे पर्यवेक्षण गृह यानी कि ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है।
1: शीतल जी, पूछताछ के दौरान जो है बालक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ प्रावधान है?
2: बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान है कि एक तो उन्हें जेल या लॉकअप में ना रखा जाए और उन्हें बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट तैयार की जाती है और उन्हें कानून सहायता प्रदान की जाती है।
1: जी तो शीतल जी, 16 से 18 वर्ष वर्ग के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के संबंध में अधिनियम में क्या कुछ विशेष प्रावधान है? इसमें कोई विशेष छूट दी जाती है?
2: विशेष छूट तो नहीं दी जाती उनको।
1: जी
2: जो अधिनियम में क्या है, क्योंकि ये जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें 18 साल तक जितने भी बच्चे हैं वो इसमें कवर होते हैं जिन्होंने किसी तरह का कोई अपराध किया है। अब जो जघन्य अपराध जिनको आप हीनियस क्राइम कहते हैं, इस समय ये विचार हो रहा है कि 16 से जो 18 वर्ष के जो बच्चे की एज है उस समय जो अपराध हो रहे हैं उनसे वो बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं, तो इनको हम क्या करते हैं कि 16 से 18 वर्ष की एक कैटेगरी एक बना दी गई है इसी एक्ट के अंदर, जिसमें उनके ऊपर वयस्कों मतलब कि एडल्ट के समान मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाती है और ये अनुमति जो है वो बोर्ड देता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देता है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं 16 से 18 साल के जो केसेस जिसमें कि बच्चों ने कोई जघन्य अपराध यानी कि हीनियस क्राइम किया होता है, तो वो न्याय बोर्ड एक प्रारंभिक मूल्यांकन करता है, फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस होती है।
1: जी तो मैम, ऐसे मामलों में यह तय करने के लिए किन किन पहलुओं पर विचार किया जाता है कि बालक परीक्षण व्यस्त के रूप में होगा या नहीं?
2: ये तय करने के लिए एक तो पहले बच्चे का परीक्षण होता है यानी कि उसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, उसमें उसकी मानसिक क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता, फिर उसके अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता और फिर उन परिस्थितियों का प्रारंभिक मूल्यांकन करना होता है कि जिनमें उसने उस तरह का अपराध किया था।
1: तो शीतल जी, प्रारंभिक आकलन यानी प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है कौन करता है?
2: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही करता है।
1: तो मैम, क्या इस प्रावधान को लेकर न्यायपालिका या समाज में कोई कानूनी या नैतिक बहस या भिन्नता है?
2: हाँ बिल्कुल है। इसमें क्या है, 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने के प्रावधान को लेकर इस समय न्यायपालिका और समाज में कानूनी और नैतिक बहस चल रही है।
1: जी।
2: कानून में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके विपरीत हमारे इस कानून में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इसमें पनिशमेंट नहीं है। तो इसमें अगर बच्चे को अपराध सिद्ध भी हो जाता है तब भी उसको 3 साल के लिए करेक्शन होम में रखा जाता है। तो अब जो जैसे हमारे जो लीगल लोग हैं वो कहते हैं कि सजा होनी चाहिए। अब इसमें दूसरी चीज क्या आती है, प्राथमिकी जो हम करते हैं, तो प्रीलिमिनरी असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, प्रीलिमिनरी असेसमेंट में बच्चे की मानसिक स्थिति और उसकी शारीरिक क्षमता के बारे में असेसमेंट होती है। अब ये किसी केस में होती है। अब जब हम बच्चे की क्षमता देखते हैं, मानसिक क्षमता देखते हैं, यानी कि उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, तो जो सोशल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोसाइटी, वो ये कहती है कि बच्चा बहुत छोटा है, उसका इस तरह से साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं हो सकता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब कुछ बच्चों को तो 16 से 18 वाले बच्चों को तो हम भेज देते हैं उसमें चिल्ड्रन कोर्ट में उनकी प्रिलिमिनरी असेसमेंट करके, और कुछ बच्चों को हम फिर भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही ट्राई करते हैं। तो ये दोनों अभी इसमें थोड़ी सी बहस चल रही है।
1: जो एक मत नहीं है, कहीं
2: एक मत नहीं है अभी इसमें।
1: कानून से संघर्षरत बालकों के पुनर्वास के लिए कौन कौन से उपाय उपलब्ध हैं? क्योंकि जब कोई एक तरह के कृत्य करता है तो उसमें जो है समाज जो है उसका कहीं न कहीं दूरी बनाता है, तो या कहीं न कहीं तो बहिष्कार करता है, तो ऐसे में जो है उनके लिए जो है किस प्रकार के जो है सुविधाएं दी जाती है?
2: इस एक्ट को कहा जाता है जुवेनाइल जस्टिस, फिर ब्रैकेट में केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है ये, ठीक है। इसमें हम बच्चे की केयर करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हमने किसी तरह का उसके ऊपर लांछन नहीं लगा सकते हैं, किस तरह से उसको क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है। अब पुनर्वास के उपायों में संस्थागत सेवाएं हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, जैसे पर्यवेक्षण होम, ऑब्जर्वेशन होम और विशेष गृह स्पेशल होम, और गैर संस्थान यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सेवाएं जैसे गोद लेना, आर्थिक संरक्षण और पालन पोषण शामिल है। इसमें शिक्षा, परामर्श, व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
1: जी, तो मैम जो हमारे पर्यवेक्षण गृह या जो है स्पेशल होम है, विशेष गृह है, उनकी क्या भूमिका रहती है पुनर्वास में?
2: जो पर्यवेक्षण गृह है उन किशोरों को अस्थायी रूप से समायोजित यानी कि वेल एडजस्ट करने के लिए, जो कानून के साथ संघर्ष में है और जिनके मामले कोर्ट में अभी चल रहे हैं यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहे हैं। विशेष गृह में क्या होता है, वो बच्चों को सुरक्षात्मक सेवाएं जैसे शिक्षा, परामर्श और कौशल विकास प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं, ताकि वे समाज में फिर से एकीकृत हो सके, मतलब समाज में वापस जाके अपना वही काम,
1: यानी कि समाज का जो एक अभिन्न
2: बन सके। हाँ
1: जी, तो शीतल जी, काउंसलिंग यानी परामर्श और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जो है, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ती है? किस प्रकार इनकी काउंसलिंग की जाती है, किस प्रकार से परामर्श दिया जाता है और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है?
2: ये जो बच्चे होते हैं इनको क्योंकि केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो परामर्श यानी कि काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन यानी कि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बच्चों को जिम्मेदारी स्वीकार करना, अपराध के मूल कारणों को समझने और भविष्य में अपराध ना करने की मदद करते हैं।
1: शीतल जी, आपके अनुभव में किन सामाजिक कारणों से बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं? क्योंकि आपने भी इतनी लंबे समय से कार्यरत हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार के जो है इसमें जो है सामाजिक कारण रहते हैं।
2: सामाजिक कारणों में एक तो नगरीकरण जिसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, उससे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, और औद्योगिकरण के कारण परिवारों का बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल हो जाना होता है और वो खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति में शामिल हो जाते हैं। यानी कि आपके जो परिवार का एक कंट्रोल है वो हमारे बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया है, जब से अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हुई है। फिर दूसरा कारण इसमें मैं समझती हूँ ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो गरीबी और कम शिक्षा है उसकी वजह से भी कुछ बच्चे इस तरह से जुवेनाइल उसमें चले जाते हैं।
1: जी, अंत में हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे कि समाज के लिए आपका क्या संदेश है, विशेषकर उन बच्चों के संदर्भ में जो कानून से संघर्ष की स्थिति में आ सकते हैं कहीं न कहीं इस किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत?
2: समाज को इन बच्चों को अपराधी की बजाय देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में देखना चाहिए। सभी हितधारकों को उनके पुनर्वास और समाज में पुनः वापस एकीकरण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। शिक्षा, कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट और सहानुभूति सिंपथी प्रदान करनी चाहिए।
1: जी, तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि समाज को जो है ऐसे जो किशोर हैं जो अपने राह से भटक गए थे उनको जो है सही मुकाम पर लाने के लिए, समाज का अंग बनाने के लिए जो है समाज, माता पिता और समाज के सभी वर्गों को जो है सहयोग देना होगा। तो शीतल जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब सुनते हैं अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल का गाया हुआ पीकू फिल्म का ये गाना।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं केदारनाथ फिल्म का गाना देव नेगी की आवाज में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये गाना।

सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाज़ों में हंसी तो फंसी फिल्म का ये गाना आप सुनना सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:20 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित। सेब की अर्ली वेराइटी टाइडमैन पहुंची फल मंडी, बागवानों को मिल रहे अच्छे दाम। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए क्वालिफाई किया। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में झमाझम बरस रहे मेघ, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई

0: गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मेनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की सरकार और वहां की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने ये सम्मान जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे सभी देशों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के बैंड ने भी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक राजधानी विक्टोरिया में तैनात रहे, जिसने भारत और सेशल्स की मजबूत मित्रता को दर्शाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। शिमला की भट्टाकुफर फल मंडी में सेब सीजन ने दस्तक दे दी है। मंडी में कम ऊंचाई वाले इलाकों से आई अर्ली वैरायटी टाइडमैन सेब प्रति 20 किलो बॉक्स 2,100 रुपए तक बिका है। शिमला जिले के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों मशोबरा, ठियोग और कोटखाई से रोजाना सेब के 8 से 10 बॉक्स मंडी पहुंच रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
1: आढ़तियों के मुताबिक सीजन की शुरुआत अच्छी है और बागवानों को 100 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दाम मिल रहे हैं। इस बार मौसम की मार से उत्पादन कम रहने की उम्मीद है, जिससे दाम अच्छे मिलने की संभावना है। मंडी में अभी नाशपाती, पलम, चेरी समेत स्टोन फ्रूट की आवक भी जोरों पर है। आढ़तियों ने बागवानों से अपील की है कि कच्चा सेब मंडी में ना लाएं, इससे दाम गिरने की संभावना रहती है। वहीं सेब सीजन को सुचारू बनाने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। उपायुक्त शिमला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बागवानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और परिवहन और विपणन व्यवस्था प्रभावी रहे। फागू में 15 जुलाई तक मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला जिले में इस वर्ष करीब 2,30,990 मीट्रिक टन सेब के उत्पादन का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष यह 4,40,684 मीट्रिक टन उत्पादन था। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर के नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा। धर्मशाला में ये कार्यक्रम मिनी सचिवालय कचहरी अड्डा स्थित कैबिनेट हॉल में तथा पालमपुर में नगर निगम कार्यालय में संपन्न होगा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि पदेन पार्षद होने के नाते धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा को शपथ ग्रहण समारोह व निर्वाचन प्रक्रिया में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष बुटेल, जो नगर निगम के पदेन पार्षद हैं, को भी शपथ ग्रहण समारोह व निर्वाचन प्रक्रिया में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण के उपरांत महापौर व उप महापौर पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया भी सम्पन्न होगी। देश भर में आज संत गुरु कबीरदास जी की जयंती मनाई जा रही है। कबीरदास न सिर्फ एक कवि और लेखक थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को संत कबीरदास जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोलन का राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेला कल संपन्न हो गया। सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी बड़ी बहन मां दुर्गा से मिलने के बाद मूल स्थान पर लौट गईं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समापन समारोह में शिरकत की। गंज बाजार से लेकर माता के मंदिर तक लोगों ने जगह जगह पर फूलों की बारिश की और पूरा शहर मां के जयकारों से गूंज उठा। स्पीति घाटी की 17 वर्षीय तंजिन नॉर्डन ने 5,970 मीटर ऊंची कनिमो पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर नया इतिहास रचा है। रिपोर्ट के अनुसार वह इस शिखर पर तिरंगा फहराने वाली स्पीति घाटी की पहली महिला बन गई हैं। कनामो या कनिमो पीक काजा और किब्बर गांव के पास स्थित हिमालय की एक प्रसिद्ध चोटी है। यह अपनी ऊंचाई, कठिन मौसम और कम ऑक्सीजन के कारण ट्रैकर्स के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है। सिरमौर जिला के दूरदराज क्षेत्रों में लोगों के लिए आयुष विभाग की मोबाइल मेडिकल यूनिट मददगार साबित हो रही है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों की जांच, उपचार और जरूरी टेस्ट भी मौके पर ही किए जा रहे हैं। इन शिविरों में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और आयुष पद्धति से उपचार की सुविधा दी जा रही है। अधिक जानकारी हमारे सिरमौर जिला संवाददाता से।
2: इन शिविरों में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और आयुष पद्धति से उपचार की सुविधा दी जा रही है। साथ ही विभिन्न प्रकार के जरूरी टेस्ट भी मौके पर ही किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए विभाग की ओर से अलग बजट उपलब्ध करवाया जाता है। शिविरों के बाद मरीजों की स्थिति पर नजर रखने के लिए फॉलोअप कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इस योजना के तहत नवजात और छोटे बच्चों की घर घर जाकर देखभाल की मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। जरूरतमंद बच्चों पर विशेष नजर रखी जाएगी और उनकी नियमित स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सीमा ने 24 जून से 28 जून तक उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनियर प्रतियोगिता में 10,000 मीटर की दौड़ में 34 मिनट 28 सेकंड और 75 मिली सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
3: एक ही राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक हासिल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसे आकांक्षी जिला चंबा के रेटा गांव की सीमा ने हासिल किया और समाज को ये संदेश दिया है कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। बहुत बड़ी बात है कि चंबा की धाविका सीमा ने एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर लिया है। सीमा का अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक भारत के लिए लाना है और ये प्रतियोगिता सितंबर माह में जापान में होगी। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊना, बिलासपुर जिलों में बीती रात रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं धर्मशाला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में मौसम साफ बना हुआ है। मंडी में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 1-2 दिन के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में पहुंचने की संभावना जताई है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सुक्खू बोले बड़ा बंगाल को बनाएंगे प्राकृतिक पंचायत, सड़क के लिए दिए 10 करोड़। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, सुक्खू ने बड़ा बंगाल में रचा इतिहास, दुर्गम क्षेत्र में रात बिताने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तीर्थ यात्रा से जुड़ी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है, भूस्खलन का खतरा, श्रीखंड के बाद किन्नौर कैलाश यात्रा भी स्थगित। हिमाचल दस्तक की खबर है, बल्क ड्रग पार्क में 700 बीघा जमीन पर अभी तक नहीं हुई पेड़ों की गिनती। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, प्रदेश में 1 जुलाई को मानसून की दस्तक संभव, 1 से 4 तक भारी बारिश का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित। सेब की अर्ली वेराइटी टाइडमैन पहुंची फल मंडी, बागवानों को मिल रहे अच्छे दाम। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए किया क्वालिफाई। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में झमाझम बरस रहे मेघ, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
4: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
5: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
6: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
8: विविध भारती पर विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल, हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे ख़ासतौर पर अमित जी की आवाज़,

0: मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था, मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते भी कि भाई बिल्कुल वॉइस आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात ये थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूज़िक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में मैं ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूज़िक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं NR भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक ऊपर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंदा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का, मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा।

से तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहाँ भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता है ये। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अमर अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने ला के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये सुदेश भोसले, इन्होंने गाया है आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊँगा, मेरे सारे गाने स्वदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज।

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश और आईएनएस ईक्षक विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है लघु वार्ता। लघु वार्ता में आज का विषय है अधिक बारिश में किन किन बातों का ध्यान रखें। श्रोताओं, अत्यधिक बारिश के मौसम में जलभराव, बीमारियों के संक्रमण और करंट लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। इससे बचने के लिए हमेशा शुद्ध उबला हुआ पानी पिएं, खुले या बासी खाने से बचें और घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। इसके अलावा बिजली के खंभों व खुले तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बारिश के मौसम में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य और खान पान संबंधी सावधानियों के बारे में अगर बात करें तो हमें हमेशा अच्छी तरह से उबला या फिल्टर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए, यानी कि बरसात के मौसम में हमें हमेशा शुद्ध पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा ताज़ा खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए। बाहर के स्ट्रीट फूड, जंक फूड और कटे हुए फलों से पूरी तरह से हमें अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता की अगर बात करें तो बारिश में भीगने के बाद तुरंत सादे पानी से हमें नहाना चाहिए और हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोने के बाद हमें सूखे कपड़े पहनने चाहिए। वहीं अगर मच्छरों से बचाव की अगर बात करें तो डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए कूलर, गमलों या आसपास जमा पानी को हमेशा साफ करें, पूरी बाजू के कपड़े पहनें और मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल करें। सुरक्षा और यात्रा संबंधी सावधानियों के बारे में अगर बात करें तो बिजली के उपकरणों से हमें सुरक्षित दूरी बनानी चाहिए। गीले हाथों से स्विच या बिजली के तारों को हमें नहीं छूना चाहिए। घर में बिजली के उपकरणों को वाटरप्रूफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही जल भराव से भी बचाव करना चाहिए। बारिश के दौरान जल भराव वाली जगहों, खुले नालों और बिजली के खंभों या ट्रांसफार्मर के पास जाने से हमें बचना चाहिए। वहीं सड़क यात्रा की बात करें तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों और रपटों, पुलियों पर पानी होने पर उन्हें पार करने का जोखिम हमें नहीं लेना चाहिए। घर के अंदर अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए ताकि पानी के रिसाव के कोई संकेत ना हो, जैसे फफूंद, पानी के निशान या पेंट का रंग खराब होना। आवश्यक मरम्मत समय रहते हमें करवा लेनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए दरवाज़ों और खिड़कियों की जांच करें कि वह ठीक से बंद हो रहे हैं कि नहीं। बारिश के मौसम में सुरक्षित रहने के लिए अपने पास हमेशा छाता या रेनकोट रखें। जल भराव और खुले बिजली के तारों से दूर रहें और बीमारियों से बचाव के लिए हमेशा साफ और उबला पानी पिएं। घर के आसपास भी पानी जमा ना होने दें ताकि जीव जंतुओं से बचा जा सके। अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं तो मौसम पर नज़र जरूर रखें। घर से निकलने से पहले स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान यानी कि वेदर फॉरकास्ट जरूर चेक कर लें। साथ ही वाहन चलाते समय, भारी बारिश में गाड़ी चलाते समय अपनी हेडलाइट्स चालू रखें और आगे वाले वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। सड़क पर पानी भरे होने पर गड्ढों और खुले नालों का अंदाज़ा नहीं लगता है, इसलिए ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां पर आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वहीं घर की सुरक्षा के बारे में बात करें तो छत, खिड़कियों और दरवाज़ों की मरम्मत करवाएं ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आए। घर की छत और आसपास की नालियों को साफ रखें ताकि पानी आसानी से निकल जाए और जल भराव ना हो।

संक्रामक रोग से भी बचने की कोशिश करें। रुके हुए पानी में पनपने वाले मच्छरों के कारण डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ जाता है, इसलिए आसपास पानी जमा ना होने दें। साथ ही पेट की बीमारियों के बारे में अगर बात करें तो दूषित पानी पीने या बाहर का खाना खाने से टाइफाइड, डायरिया और हैजा जैसी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए इन बीमारियों से भी दूर रहने की कोशिश करें। लगातार भीगने या गंदे पानी के संपर्क में रहने से त्वचा में खुजली यानी कि फंगल इन्फेक्शन और रैसेज हो सकते हैं। अगर इस प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण आपको प्रभावित करता है तो बारिश में भीगने से बचें।

सबसे अहम बात मानसून के दौरान सुरक्षित रहने के लिए हमेशा उबला हुआ पानी पिएं, अपने आसपास पानी जमा ना होने दें और जल भराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लक्षण दिखने पर तुरंत स्थानीय चिकित्सक से सलाह लें। साथ ही गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस ए और ई की बीमारियां भी लग सकती हैं। इनसे बचने के लिए हमेशा उबला फिल्टर या साफ पानी पिएं। भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। ताज़ा और घर का बना भोजन ही करें और फल सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही खाएं। खुले में बिकने वाले कटे फल, चाट और अस्वस्थ भोजन से बचें। घर के आसपास साफ सफाई रखें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से हेपेटाइटिस ए और ई का टीका लगवाएं। संक्रमण होने पर लीवर में सूजन, पाचन क्षमता में कमी, अत्यधिक कमजोरी, डिहाइड्रेशन और गंभीर मामलों में लीवर फेल होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस तरह की खतरनाक बीमारियों से बरसात के मौसम में अपने आप को बचाने की पूरी तरह से कोशिश करें। कई बार मानसून जब आता है तो हम लापरवाही करते हैं और अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पाते हैं। हमें हमेशा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और समय समय पर चिकित्सक की सलाह लेते रहने चाहिए और वायरल जैसी बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बाद में सीधे एडमिट होने तक पड़ता है। व्यक्ति को अपने और परिवार के दूसरे सदस्यों के सेहत में होने वाले बदलाव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इनमें से अगर किसी भी तरह के लक्षण घर में या फिर परिवार में किसी को दिखाई दें तो तुरंत ही चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अगर घर पर ही कोई घरेलू उपचार कर रहे हैं और वो समय पर ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत अस्पताल जाने में देरी ना करें ताकि टेस्ट करवाकर सही दवा मरीज को दी जा सके। तो श्रोताओं, ये थी आज की लघु वार्ता कि बरसात के मौसम में किस तरह से हम अपना ख्याल रख सकते हैं। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 10:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। जी, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो हमसफर बबीता। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू हो चुका है और बिल्कुल इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी कोशिश यही रहती है कि थोड़ा सा और आपको आपके लक्ष्य की ओर लेकर जाया जाए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है और ये लंबा सफ़र लक्ष्य के बिना एक बोझ लगने लगता है। लक्ष्य हमारी ज़िंदगी को एक दिशा देते हैं। लक्ष्य हमें ये बताता है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है। एक दिशाहीन व्यक्ति जिस का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो जीवन में यूं ही भटकता रहता है। जबकि जिस इंसान का जीवन में लक्ष्य होता है, वो पूरी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाता है।

होता है। इंसान को एक समय पर एक ही लक्ष्य पर अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, आपने पढ़ा तो होगा ही, सूर्य की किरणें सामान्य रूप से गर्मी देती हैं, लेकिन जब यही किरणें एक लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो अग्नि पैदा कर देती हैं। बस दोस्तों, हमारा दिमाग भी कुछ ऐसे ही काम करता है। इंसान का ध्यान बिखरा हुआ होता है तो सामान्य परिणाम देता है, लेकिन अगर यही ध्यान केंद्रित किया जाए, अगर यही ध्यान फोकस किया जाए तो असाधारण परिणाम मिलते हैं। इंसान को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने फोकस को फोकस करने की आवश्यकता होती है। मनुष्य को कभी भी बहुत सारे लक्ष्य एक साथ नहीं बनाने चाहिए। जो इंसान हर रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, वो कभी भी किसी भी रास्ते को पूरा नहीं कर पाता और वो कभी भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए एक समय में हमेशा एक ही लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करें। मनुष्य अगर हर तरह का लक्ष्य पूरा करने की सोचेगा तो वो कई तरह की मुसीबतों से, परिस्थितियों से घिर जाएगा। हाँ, लक्ष्य को पूरा करते समय जीवन में कई तरह की मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन जिस इंसान के एक से ज़्यादा लक्ष्य होंगे उसकी ऊर्जा बार बार इस्तेमाल होती रहेगी, बार बार ख़त्म होती रहेगी। वो इंसान एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कभी भी पूरी तरह से अपनी ऊर्जा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और नतीजतन एक भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में हम भी एक गीत शामिल करते हैं।

बिल्कुल दोस्तों, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इन्हीं ऊंचे नीचे रास्तों को पार करने के लिए, जीवन में लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना ध्यान केंद्रित करना, यानी कि फोकस्ड रहना। अक्सर लोग जब भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, बड़े शौक से, बड़े चाव के साथ उसको पूरा करने में लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में समय ज़्यादा लगता है या फिर असफलता हाथ लगती है, तो उसके बाद मानो इंसान का हौसला जैसे पस्त होने लगता है और इंसान अपने लक्ष्य को अधूरा ही छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, हमें लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ना होता, बल्कि ये जानने की कोशिश करनी होती है कि चूक कहाँ रह गई। हमें हमेशा अपने से सवाल करने की कोशिश करनी चाहिए कि कमी कहाँ रह रही है। हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें अपने हुनर को उन क्षेत्रों में, अपनी प्रतिभा को उन क्षेत्रों में निखारने की ज़रूरत होती है, ना कि लक्ष्य को बीच रास्ते में छोड़कर जाना होता है। दोस्तों, सबसे अहम बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। फोकस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान बढ़ाना नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को अपने रास्ते से हटाना। इंसान को टाइम ब्लॉकिंग का तरीका अपनाना चाहिए, अपने दिन को हिस्सों में बांटना चाहिए। सुबह पढ़ाई, दोपहर काम, शाम व्यायाम, रात समीक्षा। टाइम ब्लॉकिंग यानी जिस समय जो काम, उस समय वही काम। और यही आदत हमें लक्ष्य तक लेकर जाएगी, यही आदत हमें फोकस्ड रखेगी। दोस्तों, मेहनत कीजिए, लेकिन बिना प्लानिंग के नहीं। एक एक कदम उठाइए। जब एक कदम उठा चुके हैं तो दूसरे कदम की तैयारी कीजिए। रोज अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, रोज अपने आप से सवाल करो, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया और कल मैं क्या इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हैं। श्रोताओं, हमेशा याद रखिए, जो हारते हैं वही तो जीतने का मतलब जानते हैं। दोस्तों, जिंदगी में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, फोकस्ड रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में, अनुशासन के बारे में आपसे बात करेंगे, पर फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं एक और मोटिवेशनल सॉन्ग।

बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर। मुश्किलों से भाग जाए

ना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बिल्कुल दोस्तों, हर पल जिंदगी इम्तिहान है, हर दिन कोई ना कोई चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, और ज़िंदगी के इम्तिहान तभी पास होते हैं जब हम डिसिप्लिन रहते हैं, अनुशासित रहते हैं। डिसिप्लिन मतलब मन के खिलाफ जाना। मन कहे आराम करो लेकिन आप काम करो, मन कहे छोड़ दो लेकिन आप टिके रहो, मन कहे कल करेंगे लेकिन आप उसको आज करो। दोस्तों, डिसिप्लिन वो ताकत है जो हार को जीत में बदल देती है। डिसिप्लिन इंसान को अच्छी आदतें बनाने में मदद करता है, और अच्छी आदतें इंसान को जीवन में सफल बनाती हैं, सफलता की ओर लेकर जाती हैं। डिसिप्लिन मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ना। सही मायनों में कहा जाए तो इंसान मन के बहकावे में आ जाता है, यानी कि जब आपका मन मोबाइल चलाने का हो लेकिन आप काम करें, सुबह जब सबका मन थोड़ा और सोने का करता है तब आप व्यायाम करें, और जब आपका मन हार मानने का हो तब आप अपने प्रयास को जारी रखें। बस इसी को अनुशासन कहते हैं। श्रोताओं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमेशा छोटी आदतों से शुरुआत करनी चाहिए। अक्सर लोग एक दिन में ही पूरी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, एक दिन में ही पूरी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, और वो यही गलती हर दिन दोहराते हैं और जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो आप 30 मिनट से शुरू करें। यदि आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते तो 500 मीटर से शुरू करें। हमेशा याद रखिए, छोटे कदम बड़े बदलाव लेकर आते हैं। जिंदगी में नियम बनाइए, मूड नहीं। सफल लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वो नियमों के हिसाब से काम करते हैं। हमेशा याद रखिए, सफल लोग अधिक काम नहीं करते, वे सही काम पर लगातार फोकस करते हैं।

जी कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, और हम बात कर रहे थे कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना ध्यान केंद्रित रखना, यानी कि ज़िंदगी में फोकस्ड रहना। और दोस्तों, ज़िंदगी में फोकस्ड रहने के लिए कभी भी हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान में अलग अलग हुनर होता है। दूसरों की प्रतिभा से प्रतिस्पर्धा करने से बेहतर है अपनी प्रतिभा को निखारें और निरंतर उस पर काम करने की कोशिश करें। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, इससे हम अपने हुनर को, अपनी प्रतिभा को अंदर ही अंदर खत्म कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए

अपनी तुलना किसी से ना करें और अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए, अपने माइंड को फोकस्ड रखते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना, सूरज और चांद की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने ही समय पर चमकते हैं। बस उसी तरह हर इंसान में एक हुनर होता है और उसको उस हुनर को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और निरंतर उस पर काम करते हुए उसे निखारने की कोशिश करनी चाहिए। चलते चलते एक छोटी सी कविता आपके नाम। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, कठिन रास्तों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, कठिन रास्तों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, मुसीबतों के पहाड़ को बार बार, मुसीबतों के पहाड़ को बार बार आत्मविश्वास की चोट से तोड़ना पड़ता है, जब धैर्य शिथिल पड़ता है, रास्ता कठिन लगता है, तब उम्मीद के दीपक की लौ को स्वयं ही रोशन करना पड़ता है। जिंदगी की परीक्षाओं से, परिस्थितियों से बार बार टकराना पड़ता है, जिंदगी की परीक्षाओं से, परिस्थितियों से बार बार टकराना पड़ता है, यूं थक कर बैठने से नहीं, यूं थक कर बैठने से नहीं, अपना मार्ग स्वयं ही प्रशस्त करना पड़ता है, यूं हार कर ना बैठ मानव, आत्मविश्वास का बिगुल फूंकना पड़ता है। मंजिल तेरे कदम चूमेगी, हौसले की उड़ान को कायम रखना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कुछ तुम चलो कुछ हम चले कार्यक्रम संपन्न करने की लेते हैं अपने श्रोताओं से अनुमति और बोलते हैं नमस्कार।

जी, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:45 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए लोक रंग कार्यक्रम।

जी लोक रंग कार्यक्रम च तुहांदा बड़ा बड़ा स्वागत है जी। भावना कतना दी राम राम तुहां सारियां जो कने दिखा बरखा दी रिमझिम लगी हो फुहारा लगी हैं कने लोक रंगा विच लोक गीता दे नज़ारे भी लगे हो। भई श्रोतियों मौसम चाहे केड़ा भी होए अहां तुहां दे मनोरंजन खातर ए लोक गीत लई करे हर रोज़ आंदे हैं। तो अज भी अहां हाजिर हैं कने लोक गीत आवा सुनी लैंदे हैं। कार्यक्रम दे शुरुआत विच आवा सुनदे हैं लोक गीत। ए बरसाती दा मौसम लग्या कने बरसाती दा ही लोक गीत है आवा सुनी लैंदे हैं।

0: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
1: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
0: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: जी, लोक रंग कार्यक्रम तुहां सुनी कर दे ना आकाशवाणी हमीरपुर आते कने ए जे पहला लोक गीत इस अंतराला ते पहले तुहां सुनिया है से हाँ तुहां जो सुनाया है अक्षर सिंह परमार और दी आवाज च कने ज्वाला प्रसाद और दी आवाज थी। इस विच लोक रंग कार्यक्रम दा अगला लोक गीत जे हाँ तुहां जो सुनाना है से है पिंकी शर्मा और दी आवाज च, तो आवाज सुनी लेंदे ने ए लोक गीत।

0: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
1: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
0: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: जी भाई, दिखा तो भाई इसी लोक गीता कने कने संतराला दे बाद हुण लोक रंग कार्यक्रम दा समा हुआ करदा है समाप्त। ता भावना कतना दी राम राम।

लोक रंग कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को है, अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की सरकार और वहां की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने ये सम्मान जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे सभी देशों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर के नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह

0: आज आयोजित किया जा रहा है। धर्मशाला में ये कार्यक्रम मिनी सचिवालय कचहरी अड्डा स्थित कैबिनेट हॉल में तथा पालमपुर में नगर निगम कार्यालय में संपन्न होगा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा को नगर निगम धर्मशाला तथा विधायक आशीष बुटेल को नगर निगम पालमपुर के पदेन पार्षद के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह व निर्वाचन प्रक्रिया में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण के उपरांत महापौर व उप महापौर पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया भी सम्पन्न होगी। शिमला की भट्टाकुफर फल मंडी में सेब सीजन ने दस्तक दे दी है। मंडी में कम ऊंचाई वाले इलाकों से आई अर्ली वैरायटी टाइडमैन सेब प्रति 20 किलो बॉक्स 2,100 रुपये तक बिका है। शिमला जिला के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों मशोबरा, ठियोग और कोटखाई से रोजाना सेब के 8 से 10 बॉक्स मंडी पहुंच रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
1: आढ़तियों के मुताबिक सीजन की शुरुआत अच्छी है और बागवानों को 100 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दाम मिल रहे हैं। इस बार मौसम की मार से उत्पादन कम रहने की उम्मीद है, जिससे दाम अच्छे मिलने की संभावना है। मंडी में अभी नाशपाती, प्लम, चेरी समेत स्टोन फ्रूट की आवक भी जोरों पर है। आढ़तियों ने बागवानों से अपील की है कि कच्चा सेब मंडी में ना लाएं, इससे दाम गिरने की संभावना रहती है। वहीं सेब सीजन को सुचारू बनाने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। उपायुक्त शिमला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बागवानों को किसी भी तरह की सुविधा ना हो और परिवहन और विपणन व्यवस्था प्रभावी रहे। फागू में 15 जुलाई तक मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला जिले में इस वर्ष करीब 2,30,990 मीट्रिक टन सेब के उत्पादन का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष यह 4,40,684 मीट्रिक टन उत्पादन था। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: देश भर में आज संत गुरु कबीरदास जी की जयंती मनाई जा रही है। कबीरदास न सिर्फ एक कवि और लेखक थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को संत कबीरदास जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सीमा ने 24 से 28 जून तक उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनियर प्रतियोगिता में 10,000 मीटर की दौड़ 34 मिनट 28 सेकंड और 75 मिली सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक हासिल किया। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
2: एक ही राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक हासिल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसे आकांक्षी जिला चंबा के रेटा गांव की सीमा ने हासिल किया और समाज को ये संदेश दिया है कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। बहुत बड़ी बात है कि चंबा की धाविका सीमा ने एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर लिया है। सीमा का अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक भारत के लिए लाना है और ये प्रतियोगिता सितंबर माह में जापान में होगी। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में बीती रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं धर्मशाला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में मौसम साफ बना हुआ है। मंडी में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने एक दो दिन के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में पहुंचने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

शंकर महादेवन की आवाज़ में ये पारंपरिक रचना आप सुन रहे थे। विरुद्ध फिल्म के इस रचना को अजय अतुल ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: इस पारंपरिक गीत को आप सुन रहे थे अदिति सिंह शर्मा और दिव्य कुमार की आवाजों में। सूफी जॉय एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: पद्मश्री पद्मजा पिहानी जोगलेकर की आवाज में जिंदगी की जुबान इस एल्बम से गजल आपने सुनी, जिसे लिखा संदीप गुप्ता ने और महेश खानुलकर का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शकील आजमी की लिखी ये गजल आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में, तुम बिन टू फिल्म से। इसे हमने लिया अंकित तिवारी का संगीत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। और अगर छाया गीत कल रात आप सुन नहीं पाए हैं तो आज शाम 5 बजे पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। फिलहाल रंग तरंग कार्यक्रम में यह अगला गीत।

तलत अज़ीज़ की आवाज़ में आप सुन रहे थे कतील शिफाई का ये कलाम, और तलत अज़ीज़ ने ही संगीत से सजाए गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एंड गज़ल्स इस एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से ये गीत।

हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, आर किरण के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

नीता फाजली के बोल आप सुन रहे थे। सुर फिल्म के इस गीत में महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजें, एमएम क्रीम का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रंग तरंग। तो रंग तरंग में ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, नुसरत फतेह अली खां का संगीत, फिल्म कच्चे धागे।

0: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं और अब हम हाजिर हैं कार्यक्रम लेकर वनीता मंडल।
1: वनीता मंडल, वनीता मंडल।

0: जी, वनिता मंडल कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को मेरा भावना कतना का, और मेरे साथ हैं
1: बबीता।
0: हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। बबीता, आज तो मुझे मजा आ गया। मैं जब यहाँ आ रही थी ना, बारिश हो रही थी और बारिश में भीगने का इतना मजा आया ना, इतनी गर्मी के बाद बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और होता है।
1: बिल्कुल भावना जी, ये तो आपने बहुत ठीक बोला। देखिए, काफ़ी लंबे समय से गर्मी जो थी बहुत ज़्यादा थी और बारिश में भीगने का एक अलग ही मज़ा होता है। पर देखिए, बारिश में भीगने के बाद जो बहुत सी बातें हमें तंग करती हैं, उन बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: जी बबीता जी, देखिए मौसम हर बार जो है वो कुछ ना कुछ मुश्किलें तो लेकर आता
1: बिल्कुल
0: है।
1: जब भी मौसम बदलता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन वातावरण में भी होता है और साथ ही हमारे शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं।
0: जी, तो देखिए मौसम, हर मौसम का मजा हमें लेना है, पर कुछ सावधानियों के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये बरसात का मौसम भी अब देखिए ना, मॉनसून की शायद बारिशें शुरू हो चुकी हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो ये महीना है और कुछ मजा लेने का है, कुछ सावधानियां बरतने का है। तो हमें देखिए, हर मौसम में साफ सफाई का ध्यान तो हमें रखना ही है, अपनी सेहत का ध्यान भी रखना ही है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और साथ में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल भावना जी, देखिए जब मौसम बदलता है तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और जब मौसम बदलता है तो हमारी सखियों को भी सतर्क होने की और जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब भी मौसम बदलता है तो हमारे घर से ही उस चीज़ की शुरुआत होती है कि किस तरह से अपना और अपने परिवार का ख्याल जो है वो रखा जाए।
0: जी, और देखिए ऐसे

0: तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम बीमारियों से दूर रहें, प्रिकॉशन पूरी लेनी है कि कोई बीमारी हमें ना लग पाए, हमारे परिवार तक ना पहुंच पाए। लेकिन फिर भी बबीता, देखा जाता है कि कोई भी छोटी मोटी तकलीफ जब हमें होती है ना, तो डॉक्टर के पास तो खैर हम जाते ही नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास तो हम तभी जाते हैं जब बहुत ही कुछ हमें बड़ा हो जाए या फिर असहनीय कुछ ऐसा हो जाए, तभी हम दौड़ते हैं डॉक्टर
1: के पास। तभी जाना भावना जी पसंद करते हैं जब वो चीज हमारे हाथ से बिल्कुल निकलने वाली होती है।
0: बिल्कुल।
1: और कुछ चीजों के लिए तो हम घरेलू उपचार करना ही शुरू कर देते हैं, और छोटी मोटी जैसे खांसी जुकाम होता है उसका तो हम सोचते हैं कि ये तो चलो चला ही रहता है, तो इसके लिए चिकित्सक की सलाह लेना ज्यादा हम जरूरी समझते नहीं।
0: और ज्यादातर तो देखिए हम अपने डॉक्टर अपने आप ही बने होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि भाई घर में इतनी दवाइयां पड़ी हैं, किसी को भी कुछ हो जाए चलो भाई निकाल के वो दवाई दे दी।
1: जी बिल्कुल भावना जी, ये तो आपने ठीक बोला। अब देखिए जब डॉक्टर के पास हम कभी जाते हैं और वो बड़ी सी पर्ची देता है हमें, दवाइयां तो हम ले आते हैं और उनको हमने पता नहीं कितने समय से संभाल के रखा भी होता है कि जी अगली बार हम अगर छोटी छोटी मोटी बीमारी होगी तो हम इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल कर लेंगे।
0: बिल्कुल, एक बार में ठीक हो जाते हैं फिर उन दवाइयों को रख देते हैं कि अगली बार हमें ऐसा कुछ हुआ ना तो फटाफट से हम ये दवाई ले लेंगे और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो बबीता, आज हम अपनी सखियों को यही बताने वाले हैं कि दवा लेने का सही तरीका क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। देखिए दवा हम ले लेते हैं वो चलो ठीक है, छोटी मोटी तकलीफ में घर में अगर दवा पड़ी है वो लेनी भी चाहिए, लेकिन इसको लेने का भी एक सही तरीका होता है वो भी हमें पता होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल भावना जी, तो आज यही जो जानकारियां हैं बातें हैं हम अपनी सखियों के साथ साझा करेंगे।
0: बिल्कुल। अब देखिए ना, यही जो आपने बात कही कि हम डॉक्टर के पर्चे के हिसाब से दवाइयाँ ले आते हैं, लेकिन जब उन्हें रख देते हैं ना, फिर उनकी जब दोबारा इस्तेमाल करना होता है तो सबसे पहले तो हमें एक्सपायरी डेट
1: बिल्कुल जरूर देखनी चाहिए। और भावना जी, जो इन पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो तब तक लिखी होती है जब तक दवाई पूरी तरह से बंद हो या फिर पैक हो, और एक बार दवाई अगर इस्तेमाल करना शुरू हो जाती है तो वो धीरे धीरे एक्सपायरी की तरफ ही बढ़ती जाती है।
0: बिल्कुल। और कई बार होता है ऐसा कि हम वहाँ से दवा लेते हैं जहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो वो दोबारा जब हम उस दवा को लेने लगते हैं तो एक्सपायरी डेट वाली वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि वहां से हम उसको काट चुके होते हैं या वो फट चुका होता है। तो एक्सपायरी डेट हमें दिखती नहीं है, तो हम सोचते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ही तो हम लाए थे इस दवा को,
1: अंदाजे के साथ उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं दोबारा से।
0: देखिए चाहे दवा का पत्ता 10 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, लेकिन अगर वो आपको नुकसान पहुंचाए तो इससे अच्छा तो आप एक नया पत्ता ले आइए। अगर आपको एक्सपायरी डेट उसकी नजर नहीं आ रही है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए।
1: बिल्कुल। और बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है तो भावना जी हमें चिकित्सक की सलाह
0: बिल्कुल
1: जरूर
0: बिल्कुल
1: लेनी चाहिए।
0: जी। और देखिए कई बार होता है ऐसा कि आज जैसे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हमारा गला खराब है, हल्का हल्का सा बुखार आने वाला है, तो ऐसा करते हैं पूरी दवा नहीं लेते, आधी तोड़ कर ले लेते हैं, है ना, कि भाई अभी हमें इतना तो है नहीं कुछ, तो आधी तोड़ कर ले लेते हैं। या फिर किसी बच्चे को दवाई देनी है तो हम पूरी लेते हैं गोली, तो बच्चे को आधी तोड़ कर दे देते हैं क्योंकि वो बच्चा है।
1: और हमें ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए
0: बिल्कुल
1: जी, क्योंकि बच्चे की जो दवाइयाँ होती हैं वो उसकी उम्र और वजन के हिसाब से तैयार की जाती हैं।
0: बिल्कुल। तो ये हम जो अपने हिसाब से करते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं आधी तोड़ कर दे दो, जबकि दवाओं को तोड़ कर देने का भी एक नियम होता है।
1: बिल्कुल।
0: उसमें जो है एक निशान बना होता है, अगर उस
1: निशान को
0: दवा के बीच में एक निशान बना है तभी उस दवा को हम तोड़ के खा सकते हैं, नहीं तो नहीं, है ना।
1: जी भावना जी। और देखिए कई बार हमारी सखियां जो हैं वो चिकित्सक के पास जाने से आलस करती हैं और घर में ही चाय कॉफ़ी के साथ भी वो कभी कभी दवा लेने की कोशिश करती हैं, तो इससे भी हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है।
0: बिल्कुल।
1: अब देखिए कैफीन, थायराइड की जो दवाएं हैं उनका जो आयरन वाला जो असर होता है वो अवशोषित नहीं हो पाता है अगर वो चाय कॉफ़ी के साथ इन दवाओं को लेती हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारी समस्या को, घबराहट को बढ़ा देती हैं।
0: जी जी

0: जी, और ऐसे ही अगर बात करें खाली पेट और खाने के बाद जो दवाओं का इस्तेमाल होता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तो हमें बताते हैं कि ये दवा आपको खाली पेट लेनी है
1: जी
0: या ये खाने के बाद लेनी है या ये सोने से पहले लेनी है ना? तो दवा का समय जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो शरीर में कैसे अवशोषित होती है।
1: जी
0: जैसे कि थायराइड या फिर कुछ एंटीबायोटिक दवाएं खाली पेट अच्छे तरीके से काम करती हैं, जबकि पेन किलर्स खाने के बाद काम करते हैं।
1: जी
0: तो ये
1: बिल्कुल
0: दवाओं का अपना एक गुण होता है, तो इसको हमें देखकर ही उसे खाना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी से अभी याद आया तो अभी खा लिया, फिर याद नहीं आया तो चलो बाद में,
1: जी बिल्कुल
0: है
1: भावना
0: ना?
1: जी। और देखिए, कई बार जो दवाइयाँ, जैसे हमने आँख में डालने वाली दवाई होती है या फिर नाक में डालने वाली दवाई होती है, तो हम उसको कुछ समय के लिए तो यूज़ कर लेते हैं, फिर हम उसको वैसे ही रख देते हैं। लेकिन कई जो इस तरह के ड्रॉपर्स होते हैं,
0: जी
1: उनको अगर एक बार हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उनमें कई तरह के जर्म्स या फिर बैक्टीरिया जो हैं वो पनपने लग जाते हैं। तो इनका जो एक टाइम पीरियड होता है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है कि इनको कितने अंतराल के अंदर, कितने समय के अंदर हमने समाप्त करना होता है। इन चीज़ों को जानने के बजाय हम उनको इस्तेमाल ही करते रहते हैं, और इससे भी कई तरह के नुकसान, मतलब हमें उनका सामना करना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल, फ़ायदा होने के बजाय जो है वो नुकसान करना शुरू कर देती है।
1: जी
0: ऐसे ही देखिए, एंटीबायोटिक्स के बारे में हम बोलें तो कई बार हम एंटीबायोटिक्स भी रख देते हैं। हम 5 दिन की दवा लाए थे,
1: जी
0: 3 दिन में हम ठीक हो गए, तो हम वो रख देते हैं कि
1: रख लेते
0: आगे
1: हैं,
0: ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल कर
1: कर
0: लेंगे।
1: लेंगे बिल्कुल।
0: लेकिन कभी भी एंटीबायोटिक्स को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नई बीमारी के लिए वो दवा या डोज सही नहीं हो सकती, और ऐसा करने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल भावना जी। और मतलब हम डोज़ का भी, मतलब हम पूरा ही जानकारी नहीं
0: जी
1: लेते हैं, और अपने हिसाब से उन दवाइयों का डोज़ जो है वो लेते रहते हैं। और साथ ही कई बार हम ऐसा भी करते हैं, जैसे बच्चों को हल्की फुल्की खांसी है, तो पिछले कफ सिरप जो रखे होते हैं
0: जी
1: उनका भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर इनमें डले होते हैं, तो एक बार अगर ये कफ सिरप खुल गए या फिर हमने इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो इनमें भी जर्म्स पैदा होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और इनको हमें कुछ जैसे 3-4 हफ्तों में ही ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, बड़े दिनों तक हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और ऐसे ही बबीता, आजकल देखिए मल्टी विटामिन्स के बारे में का बहुत प्रचलन है,
1: जी
0: मतलब
1: बिल्कुल
0: अधिकतर सभी मल्टी विटामिन्स लेते हैं, है ना? तो आयरन के ओवरडोज से उल्टी, दस्त, लीवर या फिर फेफड़ों को नुकसान हो सकता है,
1: जी
0: और वहीं ज़्यादा कैल्शियम अगर हम ले लें तो किडनी को नुकसान हो सकता है, और विटामिन डी ओवरडोज से शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ सकता है। तो अपने हिसाब से, कि एक ने बताया कि मुझे तो मल्टी विटामिन लेने से बहुत फ़र्क पड़ा,
1: फर्क
0: मेरे को
1: जी
0: बहुत अच्छा लगा, बॉडी में अच्छी इम्यूनिटी हो गई, तो हम सोचते हैं कि उसको अच्छा, मतलब बॉडी
1: महसूस हुआ
0: फिट
1: है
0: हो
1: तो
0: गई,
1: जी
0: हाँ तो हम भी ले लेते हैं।
1: हम भी ले लेते हैं।
0: तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हर किसी का शरीर की बनावट अलग-अलग होती है, उसके शरीर में विटामिन्स की कमी होगी, इसीलिए उसे मल्टी विटामिन लेकर अच्छा
1: डॉक्टर ने
0: लगा,
1: मतलब
0: है ना?
1: सलाह दी होगी तो
0: हो सकता है आपके शरीर में कमी ना हो विटामिन्स की, आपको
1: जी
0: किसी और कारण से कुछ ऐसा लग रहा हो, तो इसीलिए ऐसे ना करें कि किसी दूसरे को देख के हम भी वही दवाई ले लेते हैं, हमें भी अच्छा ही होगा, तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपके शरीर में मल्टी विटामिन्स की कमी ना हुई तो वो आपको उल्टा नुकसान भी दे सकती है।
1: बिल्कुल भावना जी। और देखिए, कई बार जो हमारी सखियां हैं वो एक दूसरे की देखा देखी में कि इसको जोड़ों में दर्द है, इसको कहीं पीठ में दर्द है, अगर ये दवा ये ले रही है तो मैं भी इससे ये दवा पूछ के खा लेती हूँ,
0: जी
1: पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर की जो सलाह है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डॉक्टर की सलाह के बिना हमें किसी तरह का कोई डोज या ओवरडोज भी नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, पर हाँ, अब बबीता जी, हम ये कहना चाहेंगे कि ओवरडोज तो हमें नहीं करने चाहिए, दवा का इस्तेमाल भी सही ढंग से करना चाहिए, पर अपने कार्यक्रम में मनोरंजन की डोज वो
1: वो
0: तो
1: बहुत बहुत ज़्यादा
0: हाँ
1: जरूरी है।
0: जरूरी ही है। तो
1: बिल्कुल
0: भाई, एक खूबसूरत सा गीत आइए सुनते हैं इस अंतराल के बाद।
1: जी।
2: हिमाचल की

0: विद्यार्थियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: जी बबीता जी, तो इस म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं वनिता मंडल कार्यक्रम में।
5: जी बिल्कुल भावना जी, देखिए आपने मीठा सा गीत तो हमारी सखियों को सुना दिया, और देखिए हम बहुत ही ज़रूरी बातें अपनी सखियों के साथ साझा कर रहे हैं। सेहत का ख्याल तो हमने रखना ही है, साथ में देखिए मानसून की शुरुआत भी हो चुकी है, और बहुत सी घर में ऐसी बातें होती हैं जो हमारी रसोई के साथ जुड़ी हुई होती हैं।
4: जी देखिए बबीता जी, दवाओं का हमने इस्तेमाल अपनी सखियों को बताया, पर हम तो यही चाहेंगे कि नौबत आए ही ना, कि हमें दवा लेनी पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े। बस हमारे सभी श्रोता जो हैं स्वस्थ रहें, हमारी यही कामना होती है। और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखिए अपने घर की साफ सफाई का ध्यान, अपनी स्वच्छता का ध्यान, अपने खाने पीने की स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा।
5: जी बिल्कुल भावना जी, और देखिए खाने पीने की जो शुरुआत होती है वो हमारे घर की रसोई से ही होती है।
4: जी
5: देखिए कहते भी हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क का जो निवास होता है वो स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में होता है, और शरीर जो स्वस्थ रहेगा वो तभी रहेगा जब हम पौष्टिक आहार खाएंगे, और पौष्टिक आहार जो है वो बिल्कुल हमारी रसोई के साथ जुड़ा हुआ है।
4: जी तो आज देखिए सखियों को हम बताते हैं, देखिए मानसून की शुरुआत हो रही है, हो चुकी है, लेकिन अगर आज से ही हम तैयारी शुरू करेंगे तो मानसून में हमारे जो रसोई है ना वो बिल्कुल फिट रहेगी हमारी तरह।
5: जी बिल्कुल,
4: और हम सभी चाहती हैं, देखिए सखियां जो हैं वो ज़्यादातर टाइम उनका किचन में ही बीतता है तो उनकी किचन जो है वो फिट रहे ना बिल्कुल, तो उससे अच्छी बात तो उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकती।
5: जी बिल्कुल भावना जी, अब देखिए बोलते हैं ना कि घर में जो बहुत ही मेन जो पर्सन होता है वो अगर फिट रहता है तो बाकी सबको भी वो फिट रखने की कोशिश करता है। तो बस वही बात है कि अगर हमारी सखियों की जो रसोई है, किचन है, जो फिट रहेगा तो बिल्कुल घर की जो सेहत होगी, परिवार की जो सेहत होगी वो भी फिट रहेगी।
4: और कहते हैं ना कि जब हम लोग अपने किचन में जाते हैं और किचन सुव्यवस्थित हो, अच्छी सी तरह से सुसज्जित हो, तो मन ऐसे ही खुश हो जाता है, मन करता है हम ये बनाएं वो बनाएं है ना। और किचन अगर अव्यवस्थित हो ना तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, भाई क्या गंदी किचन है, इसमें हम क्या करें,
5: क्या
4: है ना
5: करें? बिल्कुल जाने का मन ही नहीं करता भावना जी।
4: तो भाई मानसून में हमने अपनी रसोई को सबसे पहले तो तैयार करना है मानसून के मौसम के लिए, ताकि हमारी रसोई जो है वो नमी से, सीलन से, कीड़े मकौड़ों और घुन से दूर रहे है ना। तो उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मसालों की।
5: जी
4: देखिए हवा में नमी बढ़ने से ना मसाले चिपकने लगते हैं और दालों में जाले पड़ जाते हैं, ये तो हम सभी देखते ही हैं।
5: जी बिल्कुल,
4: और इससे बचने के लिए ना तेज धूप में सभी दालों को, सूजी, पोहा, खड़े मसालों को एक दो दिन में हमें सुखा लेना
5: चाहिए,
4: है ना। फिर सूजी, दलिया और बेसन को कढ़ाई में हल्का सा भून कर उसको हम डिब्बों में भर के रख सकते हैं, और अनाज के डिब्बों में सूखी नीम की पत्तियां, तेज पत्ता या फिर लौंग रखने से कीड़े दूर रहते हैं।
5: बिल्कुल भावना जी, रसोई में जाते ही सबसे पहले ये तो बहुत ही अहम बात है कि हमने किस तरह से अपने मसाले और अनाज को सूखा रखना है, साथ ही ये भी देखना है कि जो भंडारण की सही व्यवस्था है वो किस तरह से हो। जब भी हम इन चीज़ों को व्यवस्थित करके रखते हैं या डब्बों में रखते हैं तो हमें

0: ये देखना चाहिए कि जो हम डब्बे इस्तेमाल कर रहे हैं वो साधारण कांच के बने ना हो, अच्छी गुणवत्ता वाले एयर टाइट जार हों ताकि उनमें बारिश की नमी ना जा सके। और
1: जी
0: देखिए, रसोई में जो सबसे खास चीज़ है नमक और शक्कर, इनमें बहुत जल्दी जो है ये चीज़ें नमी सोख लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: हमें इन्हें भी एयर टाइट डब्बों में रखना चाहिए ताकि इनमें किसी तरह की नमी ना जाए। और 4-5 लौंग, जैसे कि आपने बात की, डब्बों में डालकर अगर हम रख दें तो इनसे किसी तरह के कीड़े नहीं लगते हैं और चीज़ें जो हैं वो सूखी भी रहती हैं।
1: बिल्कुल। देखिए, नमक के डब्बे में जो है हमें कच्चे चावल के दाने रखने हैं और शक्कर में 4-5 लौंग डालनी है, इससे ये ठीक रहते हैं। और हाँ,
0: गीला
1: जैसे हम
0: चम्मच,
1: हाँ चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो गीला चम्मच कभी ना उसमें डालें। और
0: स्टील और सूखी लकड़ी या फिर प्लास्टिक के चम्मच का ही हम इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा।
1: बबीता, हमारी बरसात के मौसम में सिंक जो है ना वो बहुत गंदी हो जाती है। सिंक के रास्ते आने वाले कीड़ों और बदबू को रोकने के लिए हफ्ते में एक बार आधा कप खाने वाला सोडा और 1 कप सिरका या फिर उबलता पानी ड्रेन पाइप में हमें डालना चाहिए ताकि कीड़े मकौड़े ना आ पाएं। और अलमारियों में अखबार या ब्लॉटिंग पेपर बिछाना चाहिए, कोनों में चॉक या फिर सिलिका जेल पाउच रखें ताकि नमी दूर रहे, और मिक्सर, माइक्रोवेव और चिमनी के तारों की जांच हमें कर लेनी चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा ना रहे, जिसकी की बहुत संभावना होती है बरसात के मौसम में क्योंकि सीलन आ
0: जी
1: जाती
0: जी
1: है ना?
0: बिल्कुल। और साथ ही देखिए, जो रसोई का कचरा होता है उसे भी हमें ठीक तरह से व्यवस्थित करना चाहिए। अब देखिए, बरसात के मौसम में नमी रहती है तो कई तरह के जीव जंतु जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, साथ ही बदबू जो है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी फैल जाती है। तो हमें जो हम डस्टबिन हम रसोई में रखते हैं उसका भी ठीक तरह से संयोजन हमें करना चाहिए। कचरे को हमें 24 घंटे से ज़्यादा घर में नहीं रखना चाहिए, इससे वो सड़न पैदा करता है और रसोई में जो है वो बदबू फैल जाती है। वहीं देखिए भावना जी, सब्जियां हम बाज़ार से लेकर आते हैं, फल जो भी हम बाज़ार से लेकर आते हैं, तो हमें उन्हें सीधा लाकर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छी तरह से नमक के पानी में और गर्म पानी में धोकर सुखा कर उन्हें रखना चाहिए।
1: जी, तो इस तरह से अगर हम अपनी किचन को तैयार करेंगे ना, तो मॉनसून में हमारी किचन भी फिट रहेगी और साथ में हम भी फिट रहेंगे।
0: जी बिल्कुल
1: और
0: भावना जी,
1: अपनी फिटनेस के लिए थोड़ा ध्यान हमें बाहर की गंदगी पर भी देना है, पानी जमा नहीं होने देना है,
0: जी
1: अपने हाथों को साबुन से धोकर ही कुछ खाना पीना है या बनाना है खाना तब भी हाथों को धोकर ही बनाना है। और बाकी देखिए, मच्छरों के लिए जैसा कि हमने बताया, पानी नहीं जमा होने देना
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: गंदगी नहीं होने देनी है। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा ये बरसात का मौसम जो है वो बहुत अच्छे से बीतेगा।
0: बिल्कुल भावना जी। और देखिए, कार्यक्रम में समय जो है वो थोड़ा सा रह गया है, तो क्यों ना
1: जी,
0: अपनी सखियों को एक और गीत
1: गीत सुना
0: सुनवा दिया
1: देते
0: जाए।
1: हैं इस अंतराल के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: बिल्कुल जी, हमारी सखियों के बिना हमारा भी दिल नहीं लगता है बबीता, पर क्या
1: जी
0: करें, समय की महत्ता को देखते हुए सारे काम करने होते हैं और अब इस कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो चला है, तो अपनी सखियों
1: जी
0: से लेते हैं इजाजत और कहते हैं
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: वनिता मंडल, वनिता मंडल
0: जी, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे वनिता मंडल। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। लीजिए आज फिर हम हाजिर हैं आपके मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीत लेकर। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देशभक्ति के इस गीत के साथ।

बिल्कुल जी, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, जहाँ के सैनिक इतने आन बान और शान से देश की रक्षा करते हैं, तो हिंदुस्तानी तो सबसे आगे होंगे ही। और हम सबको गर्व है कि हमारा भारत देश दुनिया में सर्वोच्च है, हमें अपने देश पर नाज है। ये जो गीत आपने सुना 10 फिल्म से हमने लिया था, आवाज़ें उदित नारायण, शंकर महादेवन, महालक्ष्मी और साथियों की थी। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने। सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। आइए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं और इस गीत को विवाह फिल्म से हमने लिया है। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है, आवाजें उदित नारायण श्रेया घोषाल की हैं।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। समय आपको बताएं दोपहर के 12:48:45 हुए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सौदागर फिल्म से सुनते हैं। आवाजें इसमें आप सुनेंगे सुरेश वाडेकर, कविता कृष्णमूर्ति की।

अतरंगी रे इस फिल्म के इस गीत के साथ ही, जिसे गाया था धनुष और साथियों ने। इसके साथ ही आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए, जय हिंद।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 1 बजने को है। अब हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: बस कुछ पलों के बाद

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम करते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट की जाती है जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे संबंधित गीत इस कार्यक्रम में सुनाए जाते हैं और आपको इस टेक्स्ट को पढ़कर अंदाजा लगाना होता है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वो टेक्स्ट तो आपने हमारे फेसबुक पेज पर पढ़ ही लिया है, लेकिन जो इससे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए हम एक बार कार्यक्रम की शुरुआत में टेक्स्ट और या कहें इस इबारत को बता देते हैं। तो आज की इबारत है, ए दिल सुनो मेरी एक बात मानो तुम, तय जो किया तुमने वो सच करने की ठानो तुम, कभी गर राह हो मुश्किल तो खुद को आजमाना तुम, देखा कि ये दिन रात जो वो सपने सजाना तुम, किसी को देख कर धड़को तो फिर मुस्कुराना तुम, तुम्हारा भी तो दिल होगा उसे अपना बनाना तुम, कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। तो ये है आज की इबारत जिस पर संबंधित जो भी गीत हैं इनसे इनके अंदर जो भी शब्द हैं उन शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जाएंगे। हमारे साथियों ने तो बहुत सी बातें लिखकर भेजनी शुरू कर दी हैं और हमारे जो भी साथी जो अब तक हमारे फेसबुक पेज तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए बता दें कि www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं, या अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक अकाउंट के जरिए वहां अगर आप सर्च करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा तो देवनागरी यानी हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज, और इसमें एक ब्लू टिक भी मिलेगा आपको साथ में। यहाँ आपको सुरीला सफर की पोस्ट मिलेगी और भी

भारती के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी पोस्ट भी आपको यहाँ नजर आएंगी, और इस सुरीला सफर की पोस्ट पर कमेंट के जरिए आप शामिल हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथियों ने जो बहुत सी बातें लिख भेजी है वो क्या है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ और करना चाहता है, ऐसा लगता है कि हम क्यों ना अपने मन की कुछ काम करें, अपने दिल का कुछ काम करें, कहीं घूमने चले जाएं या बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उनसे छुटकारा पा लें किसी तरह से, लेकिन हमारा दिमाग हमें जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और बहुत सा ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसे करने का हमारा दिल नहीं करता। तो आप अपने दिल की सुनते हैं या दिमाग की, और किस तरह से समझाते हैं अपने दिल को, ये सारी बातें आप हम तक भेज सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी दिल की बात मानकर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसे करने के लिए आपके दिमाग ने साफ साफ मना किया हो। तो ये बातें हम तक पहुंचाइए कमेंट के जरिए। तब तक हम कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और किसने इसे लिखा।

दुलारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया, फिल्म का नाम और गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने भी एक समय अपने दिल की आवाज़ को अनसुना कर दिमाग की बात मान ली, उस वक्त लगा कि यही सही है, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस होता है कि कुछ सपने, कुछ खुशियाँ, कुछ अधूरी ख्वाहिशें वहीं पीछे छूट गईं। दिमाग ने मुझे सुरक्षित रास्ता तो दिखाया, लेकिन दिल जिस राह पर चलना चाहता था उसका अफसोस आज भी कहीं ना कहीं बाकी है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि सच्चे दिल की आवाज़ बिल्कुल सुनाई देती है अच्छी तरह से। इस इबारत की दिल छू लेने वाली लाइन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम, ये इस पूरी नज्म की सबसे प्यारी लाइन है। जब इंसान खुद से रूठ कर खुद से ही मान जाता है तो उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, ये गाना उन्होंने बताया। और आगे लिखा कि किसी की ज़िंदगी में एक शख्स के आने से पूरी दुनिया बदल जाती है, गीत सच्चे प्यार की उस मासूमियत और शक्ति को दर्शाता है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई आज गुजरात में वट सावित्री का व्रत मनाया जा रहा है और 15 दिन के बाद ये मनाया जाता है, बाकी राज्यों की अपेक्षा ये कह रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी ये त्यौहार आज मनाया जा रहा है, सभी को शुभकामनाएं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि भारत की आखिरी लाइनें जैसे कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम, ने ये साफ कर दिया कि आज दिल धड़कने के साथ मान मनोवल भी होगा। कभी ये दिन अपनी जिंदगी में आए, बहुत बार रूठ जाने पर मनाना पड़ा, इसका आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ा, लेकिन रूठा कोई अपना था, पैसा खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता है। तो भाई क्या है ये पूरा किस्सा, हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर आप लिखकर भेजना चाहें तो कमेंट में जरूर भेजें। हमारे एक साथी ने एक नज्म ही लिखी, ऐ दिल सुनो एक वादा कर लो, जो बोया है उसे फूलों सा सच कर लो, राहों में कांटे आए तो संभल कर चलो, हिम्मत से अपनी हर अंधेरे को रोशन कर लो, किसी की आंखों में जब तुम्हारा अक्स दिखे एक मीठी मुस्कान से उसे अपना कर लो, तुम्हारा भी तो है एक छोटा सा दिल, प्यार की खुशबू से उसे एक घर कर लो, झुंझला कर अगर कभी दूर हो जाओ मायूस ना करो फिर से मान जाओ। वहीं हमारे एक और साथी ने इबारत के अनुरूप कुछ गाने सुझाए हैं, देखते हैं उनकी और हमारी लिस्ट कितनी मिलती है, क्योंकि बहुत से हमारे साथियों ने लिस्ट के में जो इबारत है उसमें से कुछ शब्द चुने हैं और कहा है कि कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं। हालांकि हमें कुछ गीत तो नज़र आ गए हैं जो हमारी लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई आज का ये कार्यक्रम तो दिल से होकर गुजरेगा, तो कुछ दिल की बातें हो जाए, दिल से बहुत उम्मीदें होती हैं इंसान को, कभी किसी को अपना बनाएगा, कभी किसी का हो जाएगा, कभी किसी की कमजोरी बनेगा, कभी किसी की चाहत बनेगा, एक बेचारा दिल ही है, कभी टूटता है कभी संभलता है, और इस दिल के आगे मजबूर है इंसान। आज भी कितने नादान है दिल, समझता ही नहीं, बाद बरसों के उन्हें देखा है तो दुआएं मांग बैठा है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुनना चाहिए, धड़कता हुआ दिल हो या रूठा हुआ या फिर हो टूटा हुआ, दिल तो आखिर दिल ही है। वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें आप लिख भेज रहे हैं, तो हमें ये भी बताइए कि क्या आप जो ठानते हैं वो काम करके ही रहते हैं और किस तरह से करते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है और आपका दिल कौन सा काम करने के लिए नहीं करता, ये सब बातें आप बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, हमें बताइए किसने लिखा है ये गीत।

दो धुनी चार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल और हेमंत कुमार का संगीत। तो बिल्कुल सही नाम आपने बताया फिल्म का भी, और इसे गीत को लिखा था गुलजार ने, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी बात कर रहे हैं और अपनी दिल की बातें बता रहे हैं। बहुत से साथियों ने तो कह दिया है कि भाई दिल के नहीं सुनते, दिमाग के सुनते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुने मेरे दिल, एक बात सुनो तुम, सफ़र जो चुना तुमने उसे पूरा करके दिखाना तुम, कभी जो आए अंधेरे तो हौसला बढ़ाना तुम, बुने हैं जो हसरतों के ताने बाने उन्हें हकीकत बनाना तुम, किसी की चाहत में धड़को तो वफा निभाना तुम, कोई अपना सा लगे दुनिया में उसे गले लगाना तुम, कभी जो उदास हो जाओ तो मेरी बाहों में सिमट जाना तुम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ए दिल तेरी हर बात को दिल से अपनाऊंगा मैं, जो ठान लिया है उसे मंजिल तक ले जाऊंगा मैं, राहें चाहे मुश्किल हों हिम्मत ना हारूंगा मैं, सपनों की उस दुनिया को सच कर दिखाऊंगा मैं, मोहब्बत अगर सच्ची मिली मुस्कुरा कर निभाऊंगा मैं, दिल जिसे अपना कहे उसे दिल में बसाऊंगा मैं, और अगर कभी रूठ भी गया तो तेरी पुकार सुनने पर तेरी एक पुकार पर मुस्कुराते हुए लौट आऊंगा मैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कविताएं निकल रही हैं आपकी कलम से और हम तक पहुंच रही हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ओह एक बार फिर उबाओ इबारत। तो देखिए इन्होंने ये कहा और कहा कि पढ़कर गीतों का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते, मतलब आज अपनी भागीदारी शून्य है। तो हम ये समझ चुके हैं कि इन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जवाब दिया है, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने तो उस शब्द भी निकाल लिए हैं इबारत से और ढेर सारे गीतों के नाम भी दे दिए हैं, जितने तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो सकते। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विविध भारती से उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को एक थीम पर लगाए गाना रहने चाहिए, क्योंकि एक थीम रहे या एक शब्द दे दिया जाए ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्राम की अपनी एक तरीका होता है, अपना एक माहौल होता है कह सकते हैं हम। तो इस कार्यक्रम को कुछ इसी तरह से चलाया जाता है जिसमें बहुत सारे शब्दों वाला एक इबारत आप तक पहुंचा दी जाती है और आपको उनमें से शब्द चुनने होते हैं जिनमें गीत आते हैं। तो कभी कभी कुछ अलग अलग चीज़ें भी होती रहनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रेमी दिलों को प्रोत्साहित करती ऊर्जा स्रोत रूपी इबारत में प्रेम रस उड़ेलती सलाह भी है और सांत्वना भी। प्रेम प्रसंगों में रूठने मनाने के सुंदर संक्षिप्त चित्रण व सुलभ समाधान वाकई आशिक और माशुकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रेम गाथा के प्रवाह के संगीत में सुरीला सफर के हमराही बनने का हम के लिए हम श्रोतागण बेकरार हैं, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर छोटी सी आज की इबारत, कह रही है कि दिल की आवाज़ सुनकर अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखना, चुनौतियों का डटकर सामना करना और प्रेम व रिश्तों को स्नेह विश्वास तथा मुस्कान के साथ संजोकर जीवन को खूबसूरत बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गद्यांश काव्यात्मक रूप में है जो सीधे दिल को छू रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने, या दिल धड़कने का सबब याद आया जो दिल को छू कर निकला, दिल की महफिल सजी तो रूह की रौनक भर गई, वो आए मेहमान इस दिल के तो दिल की रंगत और बढ़ गई। तो इस तरह से इन्होंने भी काव्यात्मक रूप में दिया है अपना जवाब। लेकिन आप हमें ये बताइए, क्या कभी जैसा कि इस गीत में हो रहा था कि दिल की वजह से कभी कभी पिटने की नौबत भी आ सकती है, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो वो किस्सा हमसे साझा कीजिए अगर आप करना चाहें तो। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इसमें

काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल। संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है। मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार। मन में है ठाना जो अपने लिए, आज उस संकल्प को पूरा कर, सजाऊं जीवन का साज। दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास। मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हमारे एक और साथी ने भारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल के धड़कनों में सपने बसाए हैं, मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाए हैं। राह चाहे कठिन हो साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें। किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना। दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे। सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए। ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से भी तो भेजिए ताकि कुछ आनंद आए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज थीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस टोली के आदमी हैं हम, तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग

नहीं, उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं। तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें, और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं। बताइए किसने लिखा है।

अनुपमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। तो गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहेगा मगर दिमाग इन द्वंद्वों से सही राह दिखाता है, अतः दिमाग की ही मैं सुनता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये सोचा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रूठना मनाना तो ज़िंदगी का हिस्सा है, जहाँ अपना रिश्ता होता है

0: वहाँ ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराजगी पल भर की हो सकती है, लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूठ कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हों, उनके मनाए जाने का इंतजार कर रहे हों, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप? ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे और साथी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि कभी कभी दिल उस बात को मनवा लेता है और हम मान भी लेते हैं, बाद में दिल की उस नादानी पर बेहद अफसोस होता है उन्हें। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक गीत शामिल हो गया उनकी लिस्ट में, जो गाना था वो शामिल हो गया। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे गीत शामिल होते रहें तो कितना ही अच्छा लगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारा जो दिल कहता है वही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग कहता है और वो काम करने से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहते हैं, तो हम वो काम नहीं करते। यानी दिल और दिमाग के बीच में बड़ा ही अच्छा सामंजस्य आपने बिठा रखा है, तभी तो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, कभी दिल के सुनते हैं कभी दिमाग के सुनते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दिल की बातें होने वाली हैं, कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुननी चाहिए, पर कैसे? दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और इन सब की कश्मकश में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। चले दिल की दुनिया को बर्बाद करके भूले से मोहब्बत कर, इस तरह से उन्होंने गानों की लाइंस बताई हैं, अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया है। देखते हैं उनके गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान दिल और दिमाग के बीच इस तरह से उलझ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उस समय दिल की आवाज़ ही सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही, और हमारा दिल कह रहा है कि क्यों ना आपको एक संदेश सुना दें।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: तो अपने दिल की सुनिए और कल ही लगाइए फोन हेलो सहेली में। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने बहुत से लोगों की लिस्ट में देखा है और हमारी लिस्ट में भी पहले से शामिल था, तो हमें ये बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच

दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ें ही हमारे सवाल का सही जवाब है और हमारे साथियों ने भी सही जवाब दिया। हमारे एक साथी, हमने पूछा ना दो दुनी चार फिल्म का गीत सुनवाते हुए कि भाई कभी किसी दिल के वजह से कभी पिटने की नौबत आई क्या, तो कुछ किस्सा साझा करें। तो हमारे साथी ने भी लिखा है कि बदमाश दिल ने किसी को पिटवाया है तो वो अपनी कहानी साझा करें, लेकिन हमारे साथियों का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर दिल के सुनकर पिटने की नौबत आई या नहीं उसी को यहाँ उजागर करेंगे, तो कार्यक्रम के दौरान ही शायद पिटने की नौबत ज़रूर आ सकती है। तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने सभी साथियों को, इसलिए आप ये किस्सा हमसे साझा ना करें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब दिल धड़कता है तो ऐसा लगता है कोई अपना हमारे पास आ रहा है, जब अपना हमारे सामने होता है तो दिल कुछ कह ही नहीं पाता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे मिस्टर जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और मेरी पोती भी जल्दी रूठ जाती है, तो दोनों को ही मुझे मनाना पड़ता है और वो जल्दी से मान भी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी मान जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है इस कार्यक्रम के बारे में कि आज आप हमारे पिटने की बातें क्यों कर रही हैं, ये तो सोचिए भला अपनी इज्जत का फालूदा कौन करवाएगा। भाई ठीक है, हम तो बिल्कुल माफ़ी मांगते हैं कि ये बात आप ना साझा करें कि कभी पिटने की नौबत आई थी या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि औलाद द्वारा मन के विरुद्ध किए गए काम थोड़ी मुश्किल पैदा करता है, माँ बाप सबसे तर्क कर सकते हैं, कार्यरत जवान बच्चों से नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा इसलिए वो इस कार्यक्रम में ज़्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भैया आज हेलो फरमाइश में फोन लगा रहे हैं, इस वजह से उनका पूरा ध्यान वहाँ है, तो बस हमारी यही कामना है कि आपका कॉल लग जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल और दिमाग का हिसाब किताब बहुत अलग अलग होता है, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलता किसी को भी, किस्मत या भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। होता तो है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल कब किसी पे आ जाए पता नहीं, कब किससे रूठ जाए पता नहीं, दिल के करीब किसी को आने मत देना, क्या होगा पता नहीं, दिल को रहने दो पंछी की तरह मस्त खुले आसमान में उड़ने के लिए, दिल को लगी चोट कभी भरती नहीं, समझ जाओ वरना पछताओगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें अपने पेड़ पौधों के साथ रहना और अपनी छोटी सी वाटिका में काम करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका दिल खुश होता है इस काम से। और हमारा दिल खुश हो सकता है जब हम सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। यही हमारे सवाल का सही जवाब, हमने किसकी आवाज़ में गीत सुन रही है पूछा था आपसे। और ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है पर दिमाग उसे कंट्रोल में रखता है और इसी तरह से काम चलता है, ऐसा उनका कहना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल के बारे में उन्होंने कहा कि दिल की सुनिए लेकिन फैसला दिमाग से कीजिए, क्योंकि दिल मंजिल चुनता है और दिमाग वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, सही रास्ता चुनता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं ना तो रूठती हूँ और किसी को मनाना भी नहीं आता। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ना इस चीज़ से मतलब ना उस चीज़ से मतलब, अपना जीवन आसानी से जीजिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पर दिल की मानने का किस्सा बताना चाहूँगा। बात 2023 की है, छोटे बेटे ने MBBS का टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त की। काउंसलिंग सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सीट हो गई थी, फुल हो गई थी। अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे। सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा MBBS यही कर रहा है, तो जूठाना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है, हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज़।

जिंदगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में पापा से बहुत रूठते थे और वो मनाते थे, आज पापा उम्र के उस दौर में हैं, वो हमसे रूठ जाते हैं और हम भी उन्हें मना लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आपने ये लिख भेजी। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल मेरी सुनता ही नहीं, उसे जो चाहिए वही करना होता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ अपने दिल के हाथों। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्या बातें हैं, मैंने तो कुछ पता नहीं, बस जैसे ही सुना तो रूठने की बातें ही सुनी। वैसे रूठने तो हम भी हैं, बस थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं रह सकते, पर एक बात तो है, हम रूठें और कोई प्यार से मनाए उसका भी अलग एहसास होता है। कभी बच्चे रूठ जाते हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर उन्हें मना लेते हैं, और कभी डांट कर और कभी प्यार से। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल की हालत पर तो कई गीत, गजल और कहानियां लिखी गई हैं। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास ये दिन भी पात्र के दिली हालत और मनोवेग को शानदार चित्रण पेश करता है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाता हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात आपने लिखी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम दिल से सुनते हैं ये कार्यक्रम, गीतों की लिस्ट भी भेजते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से गीत चुनते हैं, क्योंकि दिमाग कहेगा कि तुम्हारी लिस्ट से गीत नहीं मैच हुए तो, पर दिल कहता है कि सब अपने ही तो हैं, कार्यक्रम भी अपना, उद्घोषक भी अपना, इसलिए जहां भावनाएं जुड़ी हों वहां दिल की चलती है और दिमाग तो होता ही व्यवहारिक है। तो ये जब आपने कहा तो हमें मन में ये सवाल हुआ कि आपके लिस्ट में से कितने गीत शामिल हुए, आप सभी ने बताया ही नहीं कौन कौन से गीत शामिल हो गए आपकी लिस्ट में से, ये तो बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल किसी से लगाना यानी दिल को कमजोर करना। हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल वो अनमोल एहसास है जहां प्रेम जन्म लेता है, विश्वास पनपता है, रिश्तों की खुशबू बसती है, वो केवल धड़कनों का घर नहीं बल्कि यादों, सपनों और भावनाओं का सबसे सुंदर संसार है। जब दिल में अपनापन, करुणा और सच्चाई बसती है तो जीवन का हर रास्ता रोशन हो उठता है। एक साफ दिल नफरत को नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा को जगह देता है। यही दिल हमें दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है और कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा दिल भी है जो हर धड़कन के साथ इंसानियत का गीत गुनगुनाता रहता है। तो चलिए एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, बताइए किसने लिखा ये गीत।

जाली नोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खां के बोल, ओपी नैयर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। हमारे एक साथी कहने की ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता है और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए न सिर्फ दिल की सुनिए, न केवल दिमाग की, दोनों का संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि जब कोई अपना बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा आलोचनाएं कर देता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शख्स से ही रूठती हूँ, वो भी तब जब कहीं जाने की प्लानिंग करके देर से घर आते हैं, फिर 10 बार ना नुकुर करके फिर तैयार हो ही जाती हूँ। तो भाई इन रूठने मनाने पर एक गीत आपको सुनवा देते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

0: President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL, seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बेरा से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के M नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले AIADMK विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित

0: दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन न्यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मेघालय, केरल और माही में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा
3: प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर की निगरानी में
3: जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में

0: कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
2: हम थे वो थी, वो थी हम थे, हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, डारा डारा जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

0: दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह, हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब

0: खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनूप कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
4: T-A-T, cat. Cat माने बिल्ली।
5: R-A-T, rat. Rat माने चूहा।

0: G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: Hey, made, made.

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे लाजवंती फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक्मे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने फिल्म का गीत आपने सुना। भरत व्यास ने इसे लिखा, कल्याण जी वीर जी शाह का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, फिल्म उजाला।

0: मुश्किल मौत आसान, वो जाने कैसा है ये जहां,
1: जीना मुश्किल मौत आसान।
0: हम फिर भी जी रहे हैं, जख्मों को सी रहे हैं,
2: हम फिर भी जी रहे हैं।
3: अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। वे ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री विमान अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का चौथा चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आज शिमला में बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों की खरीद पर 30% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिन्हित 1000 मार्गों पर इन बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों के लिए 5 वर्ष तक 65,000 रुपये और डीजल बसों के लिए 50,000 रुपये प्रतिमाह परिचालन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि योजना के अंतर्गत न्यूनतम 32 सीटों वाली इलेक्ट्रिक व डीजल यात्री बसें पात्र होंगी। प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर में आज नव निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई। धर्मशाला और सोलन में कोरम पूरा न होने के कारण आज महापौर और उपमहापौर का चुनाव नहीं हो पाया। मंडी में कोरम पूरा होने पर भाजपा पार्षद सुमन ठाकुर को अध्यक्ष और जितेंद्र शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। उधर पालमपुर में भी कोरम पूरा होने पर महापौर व उपमहापौर का आज चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस पार्षद राधा सूद महापौर और नीलम मलिक उपमहापौर चुनी गई। सोलन में उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि महापौर व उपमहापौर के चुनाव के दौरान कुछ कांग्रेसी पार्षद मौजूद नहीं थे और कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव नहीं हो पाया।
1: सभी 17 पार्षदों ने आज शपथ ले ली है। उसके बाद हमने आधे घंटे का समय मेयर और डिप्टी मेयर के निर्वाचन के लिए दिया था। उसके बाद कुछ पार्षद बैठक में दोबारा हाजिर नहीं हुए और कोरम पूरा न होने की वजह से बैठक को स्थगित कर दिया गया है। और अब जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो 2 तारीख को 3 बजे रखा गया। सदस्यों के कोरम का जो प्रावधान है अगली बैठक में ये अब लागू नहीं होगा।
0: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर षड्यंत्र के तहत महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज सोलन में कहा कि सोलन, मंडी और धर्मशाला नगर निगम में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन राज्य सरकार महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने को लेकर हथकंडे अपना रही है। बिंदल ने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षदों को अतिक्रमण के झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।
2: जनता ने मत दिया, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सोलन कॉरपोरेशन में, मंडी कॉरपोरेशन में और धर्मशाला कॉरपोरेशन में जीत करके आई। केवल हथकंडे अपनाने के लिए 1 महीने तक ओथ नहीं कराए। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर कुठाराघात करने के लिए और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हाईजैक करने के लिए षड्यंत्र किया। कोई पूछने वाला नहीं है कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इस योजना के तहत नवजात और छोटे बच्चों की घर घर जाकर देखभाल की मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। जरूरतमंद बच्चों पर विशेष नजर रखी जाएगी और उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इस कार्यक्रम में बच्चों के शुरुआती विकास, माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच और डिजिटल माध्यम से निगरानी की भी व्यवस्था होगी। ये योजना शहरों की झुग्गी बस्तियों, प्रवासी और वंचित समुदायों के बच्चों तक भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है भारत यूके व्यापक आर्थिक व व्यापार समझौता, नए अवसरों का द्वार, वाचक स्वर है राकेश शर्मा का।
0: भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता अर्थात सीईटीए 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है। यह समझौता भारत की व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सेवाओं और पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा देना है। इससे भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई, मछुआरों, स्टार्टअप्स, कारीगरों और सेवा क्षेत्र के पेशेवरों को वैश्विक बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने की संभावना है। इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यूनाइटेड किंगडम भारतीय वस्तुओं पर लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त करेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के बड़े और उच्च क्रय शक्ति वाले बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। विशेष रूप से वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद और कृषि प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की संभावना है। कृषि क्षेत्र के लिए भी यह समझौता महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय मसालों, हल्दी, काली मिर्च, इलायची, आम के गूदे, आचार और दालों जैसे उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी निवेश और रोजगार के अवसर विकसित हो सकते हैं। साथ ही भारत ने डेयरी, खाद्यान्न, मोटे अनाज, सेब, ओट्स और खाद्य तेल जैसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखकर घरेलू किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। एमएसएमई और पारंपरिक उद्योगों के लिए भी ये समझौता नए अवसर लेकर आया है। भारत के छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, खेल सामग्री, खिलौने और अन्य विनिर्माण उत्पाद अब ब्रिटेन के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। शुल्क समाप्त होने से भारतीय उत्पादों की लागत कम होगी और निर्यात बढ़ने की संभावना बनेगी। इससे देश के विभिन्न औद्योगिक और हस्तशिल्प केंद्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। सेवा क्षेत्र, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख ताकत है, इस समझौते का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श सेवाओं में भारतीय कंपनियों और पेशेवरों को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। इसके अलावा अनुबंधित सेवा प्रदाताओं, निवेशकों, योग प्रशिक्षकों, संगीतकारों और शेफ जैसे पेशेवरों के लिए भी ब्रिटेन में कार्य करने के अवसर बढ़ेंगे। समझौते का एक उल्लेखनीय पहलू सामाजिक सुरक्षा योगदान से जुड़ा है। इसके अंतर्गत भारत से अस्थायी रूप से ब्रिटेन भेजे गए कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान की बाध्यता से राहत मिलेगी। इससे हजारों भारतीय पेशेवरों और अनेक भारतीय कंपनियों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी। आर्थिक दृष्टि से यह समझौता भारत के निर्यात को बढ़ावा, विदेशी निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में सहायक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुक्त व्यापार समझौते केवल व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ये वैश्विक निवेशकों के विश्वास को भी मजबूत करते हैं। इससे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी बढ़ सकती है और विनिर्माण क्षेत्र को नई गति मिल सकती है। हालांकि किसी भी मुक्त व्यापार समझौते की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, समयबद्ध आपूर्ति, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन क्षमता पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही छोटे उद्यमों को भी इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक जानकारी, वित्त और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा। भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता केवल दो देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये भारत के किसानों, उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं और युवाओं के लिए नए वैश्विक अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यदि इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाता है तो ये समझौता निर्यात वृद्धि, निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास के नए आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही ये सामूहिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे सामूहिक चर्चा। विषय था भारत यूके व्यापक आर्थिक व व्यापार समझौता, नए अवसरों का द्वार। वाचक स्वर था राकेश शर्मा का। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए अब से लेकर शाम 5 तक सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
5: कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
6: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
7: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थीं, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

0: महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिखकर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था, और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था। शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदानंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ।
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
2: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
1: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
2: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का।

0: दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
0: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ, सही है।
2: ये भी लेम एक्सक्यूज है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
3: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है?
2: हाँ, मेरा तो ये निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
1: आपके कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
2: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
4: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
2: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों। कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
0: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
2: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
4: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा।

0: केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
1: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे, निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा। चेहरा फक हो गया, झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
2: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
3: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
4: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
3: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
4: वाह वाह वाह वाह, यहाँ भी चलते हुए।
2: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
4: बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहाँ पाया?
0: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
2: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
0: मुझे मेज पर नहीं मिला।
2: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसी खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
3: अरे भाई ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
4: शर्म आने चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
3: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई।
4: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है।
1: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे,
3: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं? मुझे यही आश्चर्य है। लीना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ?
4: मक्कार का मुंह काला।
3: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलाई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
6: एक आज की कसर, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
7: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
6: जी।

आए मेरी गोरी रंगीली चोर, यूं देखे हमरी ओर तिकी तिकी नजर जाए दिल में।

0: तो मंजरी जी सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए।
1: भाई बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी क्लब रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है। और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है और ये जो लत है वो बड़ी नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, हाँ। तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर, हाँ। ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठ हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, हाँ। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज़ सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीज़ों का कीजिए, लेकिन ये चीज़, इन चीज़ों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन हो, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीज़ें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है, तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नज़रिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीज़ें करना लगता है उन्हें ज़रूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो इस किरदार में आपको क्यों ढलना है,
1: क्यों ढलना है? और नेहा, जब कोई इस तरह की चीज़ों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके, वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है, आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है, अब घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है, किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों, बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी की संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हमारे साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन, तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए। यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है। छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन छोड़े रहना छोड़ना मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है। स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूँ तो दुख होता है। चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुना ही दी है।
0: तो ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन की
0: भाई,
1: बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी, है ना
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। इस
1: जी।
0: गीत से भी संदेश मिलता है। और देखा, जब विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो
1: हाँ
0: ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं, बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियाँ, दो आदतें और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहाँ प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहाँ विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए, है
1: वाकई
0: ना?
1: मंजरी जी। और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है, और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। कहीं
0: बिल्कुल
1: हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हों, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हों, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं। एक खास
0: बिल्कुल
1: उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें
0: बिल्कुल,
1: स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो
1: वही
0: भी अच्छा
1: सब
0: है।
1: है
0: और दोनों को
1: जी।
0: पहल करनी पड़ती है इस
1: हाँ
0: रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी में नेहा एक दूसरे का हाथ
1: हाँ
0: थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई कोई जो है वो कैद नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहाँ दोनों का सम्मान समान सम्मान होता है, समान अधिकार है, और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी
1: जी
0: जब शादी के लिए वो समय आए, तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए। ये
1: जी
0: नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है
1: जी
0: ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक छोटी सी
0: हाँ
1: बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना
0: बिल्कुल
1: जरूरी है, और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरदारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूर्ती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है, जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है,
0: क्या बात
1: और
0: है
1: वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये
0: जी,
1: बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना है। इसलिए विवाह बंधन नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने, संजो होने और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है नेहा।
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती हैं। अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं, लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यही नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना, और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है। ये लड़कियों के लिए भी नया होता है, ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत
0: बिल्कुल
1: ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर पे जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां
0: पूरे
1: रहना है,
0: समय देना
1: जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है।
0: जी
1: तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
0: तो वो घबरा जाते हैं,
1: एक घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
0: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिल के काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नए रिश्तों को समझे, आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए नेहा।

0: तो
1: तो
0: नेहा,
1: ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही है।
0: बिल्कुल है, और बहुत खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पाती पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया
1: और
0: था।
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं, तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल, और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए, सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो में सीखना चाहिए शादी के बाद। वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझें और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ, ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो, या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे, या ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए, हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें, और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ, तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल,
1: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र है
1: विवाह को अच्छी तरह से, बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
0: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझें, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
0: तो चलो पहले गाना सुना देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: देखो,
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए. अच्छा अच्छा
0: चलो
1: है
0: फिर
1: ना.
0: बना देते हैं दाल की कचौड़ी।
1: हाँ
0: इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे, और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई, और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से।
1: जी
0: और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको, आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गर्म करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए, है ना।
1: हाँ
0: और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आँच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के
1: वो
0: साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे. पर एक बात ये है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए. अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको आईबीपी हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से.
0: हाँ, लेकिन जिसको नमक, जिसको फीकी लगेगी वो कहेगी अरे ये
1: हाँ
0: क्या बना
1: तो
0: दिया।
1: आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5. हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं. टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग 1/2 छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना 1/2 छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं. और नमक का आपके स्वाद के अनुसार. अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे. सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा. हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए. तो तेल गर्म किए कढ़ाई में, हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए. टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है. फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दें. फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़ कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए. अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं. हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है. कचौड़ियाँ तो बन ही चुकी हैं. तो
0: बिल्कुल।
1: आप दोनों ये सारी चीज़ें खाइए. और देखिए, समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए,
0: हाँ
1: छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों
0: बिल्कुल
1: को मिलाकर खाइए.
0: बिल्कुल।
1: जी
0: तो
1: तो
0: अब
1: बस हम
0: कार्यक्रम से
1: चलें.
0: लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: नेहा शर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार.

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूँ फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज़्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता
1: जी।
2: एक दूसरी बात ये भी हमारा है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी ज़रूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज़ पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज़ फटने लगती है, ख़राब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पर काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज़ की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज़ की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए,
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज़ को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं हैं,
0: जी
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी जी तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज़ को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
0: जी जी
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफ़ी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल ख़राब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न ख़राब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पर नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पर ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: तो ये तो बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज़्यादा होती है कुछ ऐसा?
1: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
0: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
1: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज़्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने

0: एंटीबायोटिक ले ली तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज़्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं
1: जी
0: इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो
1: कर
0: कहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही।
0: दही से अच्छा कोई
1: हाँ
0: प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह के एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है हमने, हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। तो एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम
0: जी,
1: ना,
0: जी.
1: साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल. क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता
1: हाँ
0: है?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और
0: डेंजरस
1: नुकसान
0: होता
1: डेंजरस
0: है.
1: होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी
1: पहले हमको लगता था

0: तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
1: जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने
1: जी
0: कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
1: जी और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज, ख़ास तौर से जो योगा करते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
0: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट भार आ जाता है ज़्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज़्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज़्यादा होता है।
1: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है।
0: बिल्कुल पढ़ सकता है।
1: जी, और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के, क्योंकि हर कोई वो कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
0: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है, इसके लिए पूछना पड़ता है पेशेंट को क्यों नहीं पच रहा है। तो
1: हाँ
0: बोलते हैं हमको खाना पचता ही नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ,
1: जी
0: पेशेंट
1: जी
0: का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो
1: जी
0: पानी
1: जी
0: नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए।
1: ओके
0: मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियाँ हो जाएं, एक रेड हो जाए, एक ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, ज्वार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए मेरे
0: बिल्कुल,
1: ख्याल से।
0: इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना वाज क्वाइट फेमस
1: जी
0: मेरे स्कूल के टाइम पे
1: जी
0: और
1: क्या
0: काफ़ी
1: बात
0: सुना है
1: है
0: हमने।
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे, जो बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो
1: हाँ
0: आगे
1: बिल्कुल
0: चलकर।
1: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेज़ाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: हाँ, तो
0: दीजिए।
1: बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफ़ी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है।
0: जी
1: अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं। हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट और राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं। एक छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर्स मेजर करती है कि क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही है, हो रहा है, एक बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH मैनोम pH probe बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी हो उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतड़ी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज़ नॉट रियली अ डिजीज, इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत ज़रूरी है।
0: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज़्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब, एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
1: शायद मेरी शादी का ख्याल
0: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी की जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियाँ, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज़ ग्रोइंग अप एज अ किड, हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज़ वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। तो आई
0: जी
1: थिंक न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड, एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफ़ी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज़ें अगर हम कर पाए ना तो काफ़ी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए

0: कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मैं मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये
1: हाँ
0: क्या समस्या है?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सर दर्द हो गया है और
0: हाँ
1: एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है,
0: जी
1: तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ए पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली हैं, मुझे
0: जी
1: इसका जवाब किधर नहीं मिला, ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि
0: जी
1: एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है,
0: जी जी
1: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि
0: ओके
1: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स, माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटीज के बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स, इसके लिए
0: जी
1: आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
0: जी हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
1: कुछ
0: कहा
1: तो
0: कि
1: है,
0: हाँ
1: देर इज सम
0: जी हाँ
1: कोरिलेशन बिटवीन
0: ओके।
1: डाइट, ई नॉट
0: तो
1: ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
0: जी पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है,
1: हाँ
0: तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं,
0: ओके
1: बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी, तो अगर
0: यस
1: आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो
0: हाँ
1: माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
0: जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: या
1: बिल,
0: फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है, तो
1: हाँ
0: ये
1: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, दोनों सेम चीज़ करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है, अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज़ होता है, एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। द ओनली वे हम अल्कोहल कर पाते हैं कि अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के हिस्ट्री के ऊपर, तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए, वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज़ अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक
0: जी
1: एंड
0: जी
1: अदर ऑर्गन्स, तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे?
0: जी
1: धूम्रपान, टबैको, सेम चीज़, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज़्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल मेट ALD, मतलब जहाँ पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं, ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है, तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
0: जी। डॉक्टर साहब लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं
1: हाँ
0: को?
1: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है, तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफ़ी कैंप्स करते हैं, आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए, दिस इज़ अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज़्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीको ओरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खानी खान पान साफ नहीं होता है, तब तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज़्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम कम देखते हैं, फॉरेन में ज़्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से, या कभी कभी सेक्शुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है, और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है, वो तो हम जानते ही हैं होता है, ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफ़ी रेयर होती हैं। लास्ट चीज़ मैं कहूँगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
0: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इस ये भी वजह होती है क्या?
1: बिल्कुल हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे, उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
0: जी जी, और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
1: नहीं, जरा भी नहीं। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
0: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है, तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
1: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट हैं जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई, कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ। एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स, बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
0: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को, मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी? हाँ, या तो, कुछ नहीं
1: नहीं नहीं खा, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज़्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
0: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
1: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज जस्ट अ सेंसिटिव थिंग। अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो, तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
0: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
1: चले चलो, ये गाना सुना है, चले चलो,
0: चले चलो, लगान का,
1: लगान का,
0: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्याएं हैं।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बाहर। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहा है ये तेल ले, अच्छा है ये ले ले, इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, ये गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना है, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की ज़रूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, सब रेगुलेटेड दवाइज हैं, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है,
0: बिल्कुल,
1: और
0: स्टेरॉइड भी आ रहा है
1: स्टेरॉइड्स
0: आजकल
1: भी
0: लोग
1: आता
0: बता
1: है।
0: रहे।
1: और ऐसी कोई चीज़ आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट हैज़ टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज़ अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत ज़रूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM MHz पर शाम के 5 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर में राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज शाम आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश के आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री

0: अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए संवाद के माध्यम से समाधान मंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो जाएगी। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। भारत द्वारा वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के 2 विमानों ने 66 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,450 हो गई है। हजारों लोग घायल हुए और कई लापता हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया है कि श्रीलंका में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। इससे संबंधित खबरों पर श्री मिश्री ने कहा कि इस तरह की बातचीत ना तो नई है और ना ही भारत सरकार इसे मान्यता देती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे भजन संध्या का कार्यक्रम। यो मंच कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। सफर सुहाने गाने नए पुराने लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6:05 पर। खेती बाड़ी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30 पर। सात बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फिल्मी भजन आपको सुनवाए जाएंगे शाम 7:05 पर। 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रोण का गराई दिया। सात 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 8 बजे सुनना ना भूलिएगा लाइव फोन इन प्रोग्राम, फोन करें गीत सुने। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे आप सुनेंगे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 1 ही फिल्म से ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10 बजे। 10:30 पर सुनिएगा रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 11:00 ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित वरीले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर शाम के 5:08 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं कर्नैल राणा और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: भजन संध्या कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जोगिंदर बल्ला और साथियों की आवाजों में।

0: नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
1: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
0: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं भजन संध्या कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति शेर सिंह और साथियों की आवाजों में।

0: श्रोतो, इसी के साथ आज का भजन संध्या का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
5: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
4: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
0: आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम युवमंच।

0: गुड इवनिंग युवा दोस्तों, आज भी हम हाजिर हैं आपके लिए युव मंच कार्यक्रम लेकर। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं भावना कतना और आज भी हम आपके लिए ढेरों जानकारियां और मनोरंजन के लिए गीत लेकर आए हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दिन विशेष के साथ। जी हाँ, आज 29 जून है और आज के दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। जी, ये दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्रों में के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इन क्षेत्रों की असाधारण विविधता और विकास क्षमता का जश्न मनाना है। जी हाँ, इस दिवस के इतिहास के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन महासभा द्वारा वर्ष 2016 में प्रस्ताव पारित करके इस दिवस की स्थापना की गई थी और इसके बाद पहली बार ये दिवस 29 जून 2017 को मनाया गया। ये दिन उष्णकटिबंधीय देशों के सामने मौजूद गरीबी, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। तो आइए इन सब के बारे में सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं क्या। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की परिभाषा में वे क्षेत्र शामिल हैं जहां औसत मासिक तापमान लगातार 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है और जलवायु परिस्थितियां समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करती हैं। ये क्षेत्र दक्षिण और मध्य अमेरिका, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और कई प्रशांत द्वीपों के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है इसके बारे में आपको बताएं तो देखिए, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच स्थित जो क्षेत्र होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है और इन क्षेत्रों में पूरे वर्ष गर्म तापमान रहता है और स्थान के अनुसार वर्षा और शुष्क ऋतुएं स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के प्रकारों के बारे में बात करें तो देखिए, वर्षा और भूगोल के आधार पर उष्णकटिबंधीय जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि आपको उदाहरण देके बताएं तो उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट जो क्षेत्र होते हैं इनकी विशेषता होती है कि साल भर भारी बारिश होती है यहाँ और घनी वनस्पति होती है, जैसे कि अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है वगैरह वगैरह। और ऐसे ही उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र के बारे में बताएं तो यहाँ पे भारी मौसमी बारिश होती है और थोड़े समय का सूखा भी होता है। इसका उदाहरण है जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया है, भारत के कुछ भाग हैं, है ना। और उष्णकटिबंधीय सवाना के बारे में आपको बताएं तो यहाँ पे स्पष्ट आर्द्र और शुष्क ऋतुएं होती हैं, जैसे कि उप सहारा अफ्रीका, ब्राजील वगैरह वगैरह। और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्र के बारे में आपको बताएं तो यहाँ पे मध्यम वर्षा, लंबे समय तक शुष्क मौसम रहता है और इसके उदाहरण में जैसे कि मध्य अमेरिका और भारत के कुछ हिस्से आते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान क्षेत्र के बारे में आपको बताएं तो ये शुष्क रहता है आमतौर पर और बहुत कम वर्षा यहाँ पर होती है। ये सहारा रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक इसके उदाहरण है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी की 80% से अधिक जैव विविधता और दुनिया के लगभग 95% मैंग्रोव वनों और प्रवाल भित्तियों का घर है और वे जलवायु विनिमयन, जल चक्र और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियां भी बहुत रहती हैं, जैसे कि उच्च गरीबी और असमानता दरें होती हैं, जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं ये एरिया, बुनियादी ढांचे के अभाव में तीव्र शहरी विकास, वनों की कटाई और खनन के कारण जैव विविधता का नुकसान भी होता है। महासागरों के गर्म होने से प्रवाल भित्तियों पर असर पड़ रहा है और ये आजकल की चुनौतियां हैं हमारे सामने, और इसीलिए ये दिवस मनाए जाते हैं ताकि हम इन चुनौतियों को पहचाने और इनका समाधान खोजें। और ये हमारे युवा दोस्तों के अलावा और कोई नहीं इतनी अच्छे तरीके से कर पाएगा, है ना। देखिए, अगर हमारे युवा समझें कि आज बुनियादी ढांचे के अभाव में तीव्र शहरी विकास हो रहा है, लोग जमीनें खोद खोद के वहां पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं अपने रहने के लिए, अपने काम के लिए, और ये हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि जंगल खत्म हो रहे हैं, हमारी वनस्पतियां खत्म हो रही हैं, जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और वैसे ही देखिए, महासागरों के गर्म होने से प्रवाल भित्तियों पर भी असर पड़ रहा है क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वन कटे जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, तो तापमान जो है वो बढ़ रहा है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो देखिए, ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ना, इनमें अवसर भी होते हैं और चुनौतियां भी होती हैं। ये हमने देखना है कि कैसे हम इनको अवसरों के रूप में लेते हैं और कैसे हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं। अब जैसे अवसर के बारे में बात करें तो उच्च जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे बखूब होते हैं, पर जलवायु भेद्यता और पर्यावरणीय गिरावट भी होती है, ये चुनौती है। अवसर के रूप में देखें तो सांस्कृतिक विरासत यहाँ पर होती है और स्वदेशी ज्ञान भी होता है, लेकिन चुनौती देखें तो गरीबी, असमानता और बुनियादी ढांचे की कमियां भी होती हैं। अवसर देखें तो कृषि क्षमता और पर्यावरण पर्यटन होता है, और चुनौती देखें तो वनों की कटाई और पर्यावास का नुकसान भी होता है। तो अब ये हमें देखना है कि हम इन अवसरों का फायदा कैसे उठाते हैं और इन चुनौतियों का समाधान कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस बात की महत्वपूर्ण याद दिलाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जीवंत होने के साथ साथ संवेदनशील भी हैं। पृथ्वी की सतह के लगभग 40% भाग को कवर करने वाले और विशाल पारिस्थितिक तंत्रों और समुदायों को सहारा देने वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वैश्विक पारिस्थितिक स्थिरता और सतत विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और 29 जून को आज ये जो दिवस हम मना रहे हैं, ये दिवस विश्व की उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विविधता और संभावनाओं को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने हेतु जश्न मनाने, सीखने और कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित करता है। तो उम्मीद है आज के इस दिवस को अच्छी तरह से आपने मनाया होगा और अपने आप भी जागरूक हुए होंगे और औरों को भी इसके प्रति जागरूक किया होगा, और यही हमारी अपेक्षा रहती है हमारे युवा दोस्तों से। पर हमारे युवा दोस्तों को अपेक्षा हमसे ये रहती है कि हम उनका जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी करें। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और ये कमर्शियल कम म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।
1: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर,
2: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
1: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
7: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरत
7: जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है। नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
8: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी दोस्तों, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं युव मंच कार्यक्रम में। और दोस्तों, अब आपको जानकारी देते हैं आपके करियर से रिलेटेड। देखिए, कई छात्र जो हैं 12वीं के परिणाम आने के बाद कुछ छात्र डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वैज्ञानिक बनने का सपना देखते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स भी हैं जिनकी जानकारी अब भी बहुत कम छात्रों तक पहुंच पाती है। जी हाँ, ऐसे ही एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं, BASLP, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के बारे में। ये एक ऐसा उभरता हुआ करियर विकल्प है BASLP। ये कोर्स छात्रों को सुनने और बोलने से जुड़ी समस्याओं के इलाज और थेरेपी के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाता है। BASLP के माध्यम से छात्र ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने के योग्य बनते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं जो सुनने, बोलने, भाषा, आवाज, निगलने और संतुलन से जुड़ी समस्याओं का मूल्यांकन, निदान, प्रबंधन और पुनर्वास करता है। वे ENT विशेषज्ञों, न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर मरीजों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी जिम्मेदारियों के बारे में बात करें तो BASLP प्रोफेशनल की प्रमुख जिम्मेदारी जो है उसमें श्रवण परीक्षण, स्पीच और लैंग्वेज असेसमेंट, हियरिंग एड और अन्य सहायक उपकरणों का चयन और फिटिंग शामिल है। वे बच्चों में स्पीच डिले और ऑटिज्म से जुड़ी थेरेपी, वयस्कों में स्ट्रोक या ब्रेन इंजरी के बाद स्पीच रिहैबिलिटेशन, वॉइस डिसऑर्डर और हकलाने का उपचार भी करते हैं। इसके अलावा वे संतुलन संबंधी समस्याओं, टीनिटस के प्रबंधन, विशेष विद्यालयों और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में कार्य करने के साथ साथ माता पिता और केयर गिवर्स को काउंसलिंग भी प्रदान करते हैं। इसके लिए देखिए, संस्थान जो है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। BASLP में प्रवेश के लिए छात्र का 12वीं कक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रवेश केवल RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में ही लेना चाहिए, क्योंकि RCI रजिस्ट्रेशन के बिना इस क्षेत्र में प्रैक्टिस करना संभव नहीं है। और इस कोर्स की कुल अवधि 4 वर्ष की होती है, जिसमें 3 वर्ष अकादमिक अध्ययन और 1 वर्ष अनिवार्य क्लिनिकल इंटर्नशिप शामिल होती है। छात्र जो है वो सरकारी एवं निजी अस्पतालों, स्पीच एवं हियरिंग क्लिनिक, रिहैबिलिटेशन सेंटरों, मेडिकल कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में कार्य कर सकते हैं। और इसके अलावा अपना स्वयं का स्पीच एवं ऑडियोलॉजी क्लिनिक या स्पीच थेरेपी सेंटर भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, अगर आप जाना चाहते हैं इस ओर, तो प्रमुख संस्थान जो है वो अलियावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान है, क्षेत्रीय केंद्र नोएडा में। अलियावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में। अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर में। अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में है। और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में भी है। तो इन संस्थानों में जाकर आप अगर BASLP कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं।

और युवा दोस्तों, अब कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ बस आगे बढ़ते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे कि आज हम देखिए कबीर दास जी की जयंती मना रहे हैं और हमेशा ज्येष्ठ पूर्णिमा को हम उनकी जयंती मनाते हैं, और आप सबको तो पता ही है कि वो कितने महान संत कवि थे जिन्होंने पूरे जीवन समाज की बुराइयों, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई। उनके दोहे छोटे होते हैं लेकिन अर्थ बहुत ही गहरे होते हैं, जो कि हमें सही जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि ईश्वर सब में है, इसीलिए जाति पाति मंदिर मस्जिद का झगड़ा व्यर्थ है। कबीर दास जी की वाणी सीधी और स्पष्ट थी। वे दोहों के जरिए जटिल सत्य को आम आदमी की भाषा में समझाते थे। उनके अनुसार सुखी जीवन का आधार सच्चाई, धैर्य और संतोष है। आज की भागती हुई जिंदगी में भी उनके दोहे हमें रुक कर सोचने की याद दिलाते हैं। जैसे कि कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। अर्थात बुरी बातें व्यक्ति को अंदर तक जला देती हैं, जबकि अच्छी बातें अमृत की तरह जीवन को सींचती हैं। आज के समय में समाज में फैल रही नफरत को देखते हुए ये दोहा बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर हमें सिखा के गए कि बोलने से पहले सोचें कि हमारा वचन अमृत बरसा रहा है या फिर आग लगा रहा है। ऐसे ही एक और दोहा जो हमारे युवा दोस्तों के लिए प्रेरणा है कि जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो खोजता है वही पाता है, जो किनारे पर बैठा रहता है उसे कुछ नहीं मिलता है। कबीर कहते हैं कि सत्य की खोज में गहराई तक जाना ही पड़ता है। आज की भागती हुई जिंदगी में हम अक्सर सतही ज्ञान पर संतुष्ट हो जाते हैं। कबीर दास जी हमें प्रेरित करते हैं कि सच्चे ज्ञान के लिए मेहनत और साहस दोनों चाहिए। हम आज के युवा दोस्तों को भी यही कहना चाहेंगे कि बस सच्चे ज्ञान से और मेहनत से, साहस के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो युवा दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ और ऐसी सकारात्मक सोच के साथ ही अब आज का ये युव मंच कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त भावना कतना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
1: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
0: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: बदलो बदलो आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
1: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
0: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र एफ एम 101.8 MHz पर शाम के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए इस वर्ष 212 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार सुदृढ़ हो रही है और कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों का तेजी से निपटारा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है और उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश की चार नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर में आज नव निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई। धर्मशाला और सोलन में कोरम पूरा न होने के कारण आज महापौर और उपमहापौर का चुनाव नहीं हो पाया। मंडी में कोरम पूरा होने पर भाजपा पार्षद सुमन ठाकुर को महापौर और जितेंद्र शर्मा को उपमहापौर चुना गया है। पालमपुर में भी कोरम पूरा होने पर महापौर व उपमहापौर का आज चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस पार्षद राधा सूद महापौर और नीलम मलिक उपमहापौर चुनी गई। धर्मशाला में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी नव निर्वाचित 17 पार्षदों को शपथ दिलाई, लेकिन कोरम पूरा न होने पर महापौर व उपमहापौर का चुनाव स्थगित किया गया। अब ये चुनाव 1 जुलाई को होगा।
1: कोरम की रिक्वायरमेंट 3/4 होती है टोटल आपके इलेक्टेड काउंसिलर, तो अभी फर्स्ट इंस्टेंस में वो कोरम पूरा नहीं हुआ। कोरम पूरा ना होने की वजह से अब आगे इसको नियम अनुसार स्थगित किया गया है। हम दोबारा से एक समय तय करेंगे और उस तय समय पर दोबारा से सिंपल मेजोरिटी के साथ चुनाव संपन्न कराया जाएगा।
0: दूसरी ओर भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव टालने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी 11 पार्षद सदन में मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने जानबूझकर बैठक में भाग नहीं लिया।
2: भारतीय जनता पार्टी के सभी 11 पार्षद अंदर मौजूद थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं वो नहीं आए, तो उस कारण जो है अब चुनाव जो है वो जिस तरह से एक्ट कहता है कि 1 तारीख को 3 बजे का समय इसका तय हुआ है, दूसरे में जो नंबर होगा मेजोरिटी उसमें ही चुनाव हो जाएगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके देश की स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उपचार की बेहतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संबंधों को बेहतर बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में 23 नए एम्स और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और पिछड़े जिलों में 157 से अधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनता ने विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में भारी मतदान किया है। उन्होंने आज जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की रावीम पंचायत में स्थानीय लोगों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आभार समारोह में शिरकत की। रोहित ठाकुर ने खंड विकास समिति जुब्बल की नव निर्वाचित अध्यक्ष कमलेश झगटा और अन्य सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि खंड विकास समिति जुब्बल की सभी 15 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि जिला परिषद की 3 सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है और पिछले 12 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने आज शिमला के जाखू मंदिर में दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की मदद से हिमाचल प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 1 दशक में देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और करोड़ों परिवारों को पक्का घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, बैंक खाते, नल से जल और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो दोस्त अनूप। के मोहब्बत सब्र के सिवा कुछ नहीं, के मोहब्बत सब्र के सिवा कुछ नहीं, मैंने हर इश्क को इंतजार करते देखा है।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
6: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
7: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
8: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। के सांसे मेरी, जिंदगी मेरी और मोहब्बत भी मेरी, मगर हर चीज मुकम्मल करने के लिए जरूरत है तेरी।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
7: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सफर सुहाने, गाने नए पुराने, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। तेरे ख्यालों को दिल से लगाए बैठा हूँ, तेरे ख्यालों को दिल से लगाए बैठा हूँ, एक चिराग की लौ सी जला के जलाए बैठा हूँ।

कि जख्म वही है जो छिपा दिया जाए, जो बता दिया जाए उसे तमाशा कहते हैं।

इसी गीत के साथ आज का सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कर दे ना, तो फिर यहाँ जो मुनाफा भी ज्यादा मिलता भी है या। तो वे कार्यक्रम भी हूँ अपने किसान भाइयों से होगी यहाँ गलबात साझा करनी कि बकरी पालन योजना ने कन्या अगर यहाँ दे किसान भाई जी ऐसे जुड़ी आएंगे कने बकरी पालन का काम जे ऐसे शुरू करी लेंगे ना, तो इससे यहाँ जो किस तरह फायदा जे ऐसे मिलना भी है या।
1: बिल्कुल जी, तब बकरी पालन योजना जड़ी है ना से केंद्र कने राज्य सरकार द्वारा चलाई हो ग्रामीण क्षेत्र च स्वरोजगार जो बढ़ावा देने वाली योजना है। सह भी किसान जो जिया अतिरिक्त आय जे है सह सुनिश्चित हो जाए भी
0: जी
1: कने इसके तहत बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने वास्ते जे है सह सब्सिडी भी दी जाती कने बैंक लोन सुविधा जे है सह भी मिलती।
0: जी बकरी पालन योजना दी अगर आहे गल बात करिए ना, तो किसान कने जड़े आहां दे युवा वर्ग बेरोजगार आहां दे भाई बहन है तिना वास्ते जे इसे कट लागत च कम खर्चे च जे ऐसे कने कम जोखिम वाला ये स्वरोजगार जे ऐसे आहां दी सरकार दी तरफा ते आहां दे किसान भाइयों वास्ते जे है शुरू कीती रवी है या।
1: बिल्कुल, कने इस विच जियां मांस कने दुग्ध उत्पादन दे जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो और ज्यादा मजबूत करना जे ऐसा ही है योजना दा उद्देश्य है। कने उन्नत नस्ल दियां जड़ियां बकरियां न तिना जो बढ़ावा जे ऐसे ही योजना च दित्या जांदा।
0: जी तो बकरी पालन योजना ने कन्या अगर आहे जुड़ियांगे तो इससे यहाँ दे किसान भाई जो जे ऐसे किस तरह लाभ मिलना भी है, तो इस योजना ने कन्या जुड़ी ने जे ऐसे राज्य कने केंद्र सरकार दी तरफा ते यहाँ दे किसान भाइयों जो कई तरह दी सब्सिडी जे इसे दी जाती भी है, लोन दी सुविधा जे इसे इस दी जाती भी है ना, कि अहां दे किसान भाई जे ऐसे घट ब्याज दर च जे ऐसे ऋण ले सकते भी है कने यह योजना दे तहत बकरी पालन दा काम आहे शुरू कर दे भी है ना। तो आम तौर पर क्या होंदा भी इस च जे ऐसे यूनिट बनाए रहे होंदे भी है, यानी कि अगर अहां जे ऐसे जियां बकरियां पालनी भी है ना, तो अहां जो 11 बकरियां अगर अहां लेना चाहंदे तो 30 च जे ऐसे 10 मादा बकरियां अहां जो मिलनी कने एक जे ऐसे नर बकरे मिलने भी है, इस तरह जे ऐसे इस दे यूनिट बनाए रहे होंदे। छोटे यूनिट जियां 5 दा अगर यूनिट है तो इस च 4 मादा बकरियां होनी कने एक जे ऐसे नर होना भी है, तो इस तरह यूनिट जे ऐसे बनाए रहे होंदे।
1: बिल्कुल जी, कने बकरी पालन योजना वास्ते जे ऐसा जियां आवेदन करना है ना तो जरूरी पात्रता मापदंड जे ऐसे क्या होना चाहिए, तो भाई आवेदक दी आयु जे है ना से 18 से 55 साल के बीच जे ऐसे होना चाहिए। कने आवेदक जे है से संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, जी हूँ अहाँ हिमाचल प्रदेश चन तो अहाँ हिमाचल प्रदेश की योजना का आवेदन करना ना, तो फिर अहाँ हिमाचल के स्थायी निवासी हैं तो अहाँ यह योजना का लाभ जे ऐसे ले सकते
0: जी। कने यह योजना का फायदा लेने के ताए जे ऐसे सबसे बड़ी गल यही जमना बोबो कि बकरी पालन का अहाँ वाले ट्रेनिंग होनी चाहती भी है, यानी कि यह प्रशिक्षण जे ऐसे ले रहा होना चाहिए या फिर अहाँ जो बकरियां पाल जी ऐसे अनुभव होना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: योजना ने करने जी ऐसे जुड़ी सकते भी है।
1: बिल्कुल पे किस तरीके ने जी ऐसे हाँ बकरियां पाली सकते भी हाँ जो पता होना चाहिए। कने इस वास्ते जरूरी दस्तावेज जी ऐसे हाँ जो चाहिए होंगे जी आधार कार्ड कने निवास प्रमाण पत्र
0: जी
1: कने आय का भी प्रमाण पत्र सोगी सोगी हाँ बैंक पासबुक की कॉपी कने जमीन के कागजात या लीज एग्रीमेंट है कोई तो सह भी हाँ जो चाहिए होंगे। कने प्रशिक्षण जरा हाँ ले ना कुछ जी ट्रेनिंग ली बकरियां पालने वास्ते
0: जी
1: तीसदा भी प्रमाण पत्र जे ऐसे जरूरी हुंदा है योजना च आवेदन करने वास्ते
0: जी। तब भाई दिखा ये सारे जरूरी कागज जे ऐसे आहां वाल होने चाहिए भी है बकरी पालन योजना ने करने जुड़ने दे ताए कि ने आवेदन आहां किस तरह करना भी है भी अपने नजदीकी पशु विभाग या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से या फिर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ने करने संपर्क करने करने जे चाहे यह योजना दे ताए आवेदन करी सकते भी है।
1: बिल्कुल जी, कने या तो फिर यहाँ केंद्र सरकार दी जड़ी राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना है इसदी आधिकारिक राष्ट्रीय पशुधन मिशन दे पोर्टल पर जाइने भी ऑनलाइन आवेदन जे ऐसे हाँ करी सकदे।
0: तो भाई इस तरह जे ऐसे बकरी पालन स्कीमा ने कन्ने आहे जुड़ी सकदे भी है कने बकरी पालन दा कामकार करीने कन्ने जे ऐसे अच्छी आमदनी कमाई सकदे भी है।
1: बिल्कुल, मतलब घर बैठे बिठाए ही हाँ जो कट लागत पर स्वरोजगार जे ऐसे मिली जाना कने जी यहाँ दूजे काम ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਆਏ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜੇ ਐਸਾ ਹਨ ਦਾ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਐਸਾ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੇ ਐਸਾ ਹੋਈ ਜਾਣੀ।
0: ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਸੋਗੀਆਂ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ 'ਚ ਐਸੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸੁਣਨੇ ਮਿੱਠੜੇ ਮਿੱਠੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 MHz पर। श्रोताओं, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम। फोन करें, गीत सुने। इस प्रोग्राम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी मनपसंद फिल्म का गीत। नंबर हमारा वही रहेगा 0197222321-22।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर शाम के 7 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षण, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में

0: उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। यह वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सुलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के इस फिल्मी गीत के साथ।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपके लेकर आए हैं गोपी फिल्म से, आवाजें महेंद्र कपूर और साथियों की हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी भजन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति क्रांति फिल्म से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे भजन, फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफ एम बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7:25 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम रौनका गराएं दिया।

कार्यक्रम रौनकां ग्राईंदियां सुनने आहाड़े यहां दे सारे श्रोतियां जो राम राम। कने बिल्कुल जी तुहे बिल्कुल ठीक होने, स्वास्थ्य होने, हसमुख होने, कने रौनकां जे ही सै लग रही होनी तुहां दे आस पास तुहां दे ग्राएं च। कने बिल्कुल रौनकां लग रही रहना चाहिए ग्राएं च हो, शहरा च हो, जिथे भी हो रौनकां बड़ी भारी जरूरी हैं। कने दिक्खा राती बरखा भी होई तां रौनकां तुहां जो तां भी लई होनी, क्योंकि दिक्खा गर्मी जी है थोड़ी घट होई गई तां रौनक आई जांदी चेहरे पर, है ना जी। कने गर्मी ने थोड़े जे असें ऐसे रौनक मुरझाई जांदी तां बरखा होई गई तां बड़ी अच्छी गल है। कने बरखा होना भी जरूरी है, गर्मी होना भी जरूरी है, सर्दी होना भी जरूरी है। सारी जिहड़ी ऋतु बनाई परमात्मे से बड़े हिसाबे ने सांझो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जहाँ का जिहड़ा शरीर है इसको हर ऋतु चाहिदी। यानी भी धुप ही धुप हो या बरखा ही बरखा हो या सर्दी सर्दी हो, तो सारी चीज़ा बड़ी जरूरी हैं। जे धुप्प जरूरी है तो सर्दी भी जरूरी है, बरसात भी जरूरी है। ये सारी चीज़ा जरूरी है अहाँ के शरीर हो, ता ही अहाँ का शरीर जी अस फिट रही सकता। कने दे नहीं सोचना भी गर्मी अहाँ जो तपा दी, तपा दी कने अहाँ के कई रोगों जो भी कटा दी।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र दे तुहे इस वक्त सुना दे कार्यक्रम रौनकां गराई दिया। कार्यक्रम च अज असें गल करा दे फलदार पौधे की। तो बिल्कुल जी, फलदार पौधे तुहे उगाई सकदे कने इस कारण जे तुहां जो क्या चाहिदा अच्छी जे असें तुहां जो एकदम मिट्टी चाहिदी, मौसम अनुसार तुहे पौधे लगा कने तिन्हां दी नियमित सिंचाई करा, समय समय पर खाद देया, रोग कने कीटनाशक जे असें तुहे तिसो नियंत्रित रख सकदे। कने तुहां बल दिखा बड़ी अच्छी चीज़ां तुहे लाए सकदे, चाहे इस गल अम्बा दी हो, अमरूदा दी हो, अनारा दी हो, नींबू दी हो, लीची हो, नाशपती हो, ये सारी चीज़ां लगभग अहां दे इस क्षेत्र च लगी जांदियां। कने बड़े पर लोकें लाई हो, कने जिन्हें लाई हो है फायदा भी चक्का।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए विशिष्ट सेवा पुरस्कार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों पर 30% सब्सिडी देगी राज्य सरकार। मंडी व पालमपुर नगर निगम में आज हुआ महापौर और उप महापौर का चुनाव। सोलन व धर्मशाला में कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव स्थगित। भाजपा ने राज्य सरकार पर महापौर व उप महापौर के चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। और खराब मौसम व यात्रियों की सुरक्षा

को देखते हुए किन्नौर जिला प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा को फिलहाल स्थगित रखने का लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और

अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन समुद्र बसों के लिए 5 वर्ष तक 65,000 रुपये और डीजल बसों के लिए 50,000 रुपये प्रतिमाह परिचालन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि योजना के अंतर्गत न्यूनतम 32 सीटों वाली इलेक्ट्रिक व डीजल यात्री बसें पात्र होंगी। प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर में आज नव निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई। धर्मशाला और सोलन में कोरम पूरा न होने के कारण आज महापौर और उपमहापौर का चुनाव नहीं हो पाया। मंडी में कोरम पूरा होने पर भाजपा पार्षद सुमन ठाकुर को महापौर और जितेंद्र शर्मा को उपमहापौर चुना गया। पालमपुर में भी कोरम पूरा होने पर महापौर व उपमहापौर का आज चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस पार्षद राधा सूद महापौर और नीलम मलिक उपमहापौर चुनी गई। धर्मशाला में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी नव निर्वाचित 17 पार्षदों को शपथ दिलाई, लेकिन

0: पार्षद सदन में मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने जानबूझकर बैठक में भाग नहीं लिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के सभी 11 पार्षद अंदर मौजूद थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं वो नहीं आए। तो उस कारण जो है, अब चुनाव जो है वो जिस तरह से एक्ट कहता है कि पहली तारीख को 3 बजे का समय इसका तय हुआ है, दूसरे में जो नंबर होगा मेजोरिटी उसमें ही चुनाव हो जाएगा।
0: उधर सोलन में भी उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने नवनिर्वाचित पार्षदों को आज शपथ दिलाई, लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण महापौर व उपमहापौर का चुनाव नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि अब महापौर व उपमहापौर का चुनाव 2 जुलाई को होगा।
2: सभी 17 पार्षदों ने आज शपथ ले ली है। उसके बाद हमने आधे घंटे का समय मेयर और डिप्टी मेयर के निर्वाचन के लिए दिया था। उसके बाद कुछ पार्षद बैठक में दोबारा हाजिर नहीं हुए और कोरम पूरा न होने की वजह से बैठक को स्थगित कर दिया गया है। और अब जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो 2 तारीख को 3 बजे रखा गया। सदस्यों के कोरम का जो प्रावधान है अगली बैठक में ये अब लागू नहीं होगा।
0: इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर षड्यंत्र के तहत महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज सोलन में कहा कि राज्य सरकार भाजपा पार्षदों को अतिक्रमण के झूठे मामलों में फंसाने का कार्य कर रही है।
3: जनता ने मत दिया, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सोलन कॉरपोरेशन में, मंडी कॉरपोरेशन में और धर्मशाला कॉरपोरेशन में जीत करके आई। केवल हथकंडे अपनाने के लिए 1 महीने तक ओथ नहीं कराई। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर कुठाराघात करने के लिए और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हाईजैक करने के लिए षड्यंत्र किया। कोई पूछने वाला नहीं है कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सटेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके देश की स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि देश भर में 23 नए एम्स और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और पिछड़े जिलों में 157 से अधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनता ने विकास की राजनीति पर मोहर लगाई है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में भारी मतदान किया है। उन्होंने आज जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की रावीम पंचायत में स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आभार समारोह में शिरकत की। रोहित ठाकुर ने खंड विकास समिति जुब्बल की नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमलेश झगटा और अन्य सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि खंड विकास समिति जुब्बल की सभी 15 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि जिला परिषद की 3 सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए इस वर्ष 212 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार सुदृढ़ हो रही है और कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों का तेजी से निपटारा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है और उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों में अनियमितता बरतने और पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मिली धनराशि का लाभ अपने

0: नियमों के विपरीत है। राजेंद्र राणा ने इन मामलों की विजिलेंस जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। किन्नौर जिला प्रशासन ने खराब मौसम और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया है। ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन प्रशासन ने कहा कि मौसम व मार्ग की स्थिति में सुधार के बाद ही किन्नर कैलाश यात्रा करवाने का निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर देव समाज ने प्रशासन से धार्मिक व पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का हवाला देकर इस यात्रा पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। सतलुज नदी में बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए किन्नौर जिला में कड़छम बांध प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर आज रात 8 बजे से नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। ऐसे में जिला प्रशासन व बांध प्रबंधन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतलुज के किनारे न जाने और सतर्कता बरतने की अपील की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है और पिछले 12 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने आज शिमला के जाखू मंदिर में दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की मदद से हिमाचल प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। लाहौल स्पीति जिला के जहालमा नाले में आज अचानक बाढ़ आने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। जिला में तेज धूप के कारण ग्लेशियर पिघलने से ये बाढ़ आई है। पानी के तेज बहाव से सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया वैकल्पिक मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और मनाली उदयपुर व पांगी किलाड़ सड़कें भी बंद हो गई हैं। क्षेत्र के लोगों ने सरकार व प्रशासन से सड़क संपर्क बहाल करने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए विशिष्ट सेवा पुरस्कार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों पर 30% सब्सिडी देगी राज्य सरकार। मंडी और पालमपुर नगर निगम में आज हुआ महापौर व उपमहापौर का चुनाव। सोलन व धर्मशाला में कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव स्थगित। भाजपा ने राज्य सरकार पर महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। और खराब मौसम व यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किन्नौर जिला प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा को फिलहाल स्थगित रखने का लिया निर्णय। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं फेमैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
2: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
3: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
2: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
1: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि आज रात 8 बजे आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम। फोन करें, गीत सुने। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर हमारा वही है 0197222312।

0: तो दोस्तों, आज की जो फिल्में हमारे पास हैं उनके नाम आपको बता देते हैं, और उन फिल्मों में से अगर आप किसी भी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल जी, लाइव फोन इन प्रोग्राम फोन करें, गीत सुने में आप हिस्सा ले सकते हैं। आज की फिल्में हैं अली बाबा 40 चोर, बहार आने तक, अर्थ, बेराग, आया सावन झूम के, बेटी बेटे, दिल देके देखो, दूल्हे राजा, गर्व और कल आज और कल। तो ये फिल्मों के नाम आपको हमने बता दिए, और बिल्कुल जी, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 MHz पर रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए लाइव फोन इन प्रोग्राम, फोन करें गीत सुने। लाइव फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने, सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे अपने रेडियो दोस्त अनूप के साथ। कार्यक्रम में बिल्कुल जी फोन कॉल जाना हमें शुरू हो गए हैं, तो चलिए लेते हैं कार्यक्रम की पहली फोन कॉल। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी। भुक्कर सिंह जी बोल रहे हैं? बिल्कुल, आपका आज पहला फोन लग गया है। भुक्कर जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया सर, आप सुनाइए।
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और बारिश हुई आपकी तरफ?
1: नहीं सर, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: जी जी, रात को तो बारिश हुई होगी।
1: हेलो
0: जी जी जी, कौन सी फिल्म का गीत सुनवाए आपको?
1: बाहर आने तक।
0: बाहर आने तक फिल्म का गीत आपको सुनवा देते हैं भुक्कर सिंह जी। आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
1: बहुत ठीक ठाक है ना?
0: हम बहुत बढ़िया हैं जगदीश जी, आप कैसे हैं?
1: बस जी अच्छे हैं, सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
1: कौन कौन सी फिल्में हैं?
0: फिल्में हमारे पास हैं अली बाबा 40 चोर, अर्थ है, आया सावन झूम के, बेरंग है, बेटी बेटे हैं, दिल दे के देखो, दूल्हे राजा, गर्व, आज कल और कल।
1: आया सावन झूम के सुना दो।
0: आया सावन झूम के, बिल्कुल जी। ये तो हमारे पास है नहीं, है दो गाने हैं, आया सावन झूम के और बुरा मत सुनो।
1: हाँ जी,
0: इन दोनों में से सुनवा देते हैं जगदीश जी आपको। धन्यवाद आपका।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, नमस्कार जी। जी आपका शुभ नाम एक बार फिर से बता दीजिए। कृष्ण चौहान जी जयसिंहपुर से बात कर रहे हैं। कृष्ण जी कैसे हैं आप? हमारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं। हेलो जी जी जी, कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं आपको?
1: अभी पहाड़ी हिंदी सब
0: सब अच्छे लगते हैं। तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको? बेटी और बेटे फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं। कृष्ण जी आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।

किधर किधर गए हम किधर किधर गए चांद पर उतर गए नैन वाले तेरे नैन जादू कर गए नैन वाले तेरे नैन जादू कर गए जादू कर गए हो नैन जादू कर गए।

0: नैनो वाले तेरे नैना जादू कर गए, ओ नैनो वाले तेरे नैना जादू कर गए।
1: लाइव फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। हेलो
2: नमस्कार सर जी।
1: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम जी बॉबी।
1: बॉबी जी बोल रहे हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं बॉबी जी भी।
2: हाँ जी अरला से बोल रहे हैं जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अरला से बॉबी जी बोल रहे हैं। और बॉबी जी और सुनाइए, क्या चला है आजकल कुछ खास?
2: बस जी अपना ही काम करते हो, काम रेगुलर चला रहता है हमारा।
1: बहुत बढ़िया,
2: हमीरपुर सुनते रहते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है,
2: सबसे अच्छा साथी मिल गया ना आकाशवाणी हमीरपुर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आप भी हमारे साथी हैं, यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी हमीरपुर के साथ, और लोगों को भी प्रेरित करिएगा आकाशवाणी सुनने के लिए, रेडियो सुनने के लिए।
2: बिल्कुल करते हैं जी।
1: जी बहुत अच्छी बात है, आज कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
2: दूल्हे राजा का।
1: दूल्हे राजा फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं बॉबी जी, और कुछ कहना चाहेंगे?
2: बस जी मैं यही बोलना चाहता हूँ आकाशवाणी के जरिए ना
1: जी,
2: जैसे आजकल हमारे बच्चे जो है ना ये बिगड़ते जा रहे हैं ना, तो हम सोचते हैं कि जैसे पढ़ाई के लिए भेज दिया उनका ख्याल नहीं कर पाते, थोड़ा हमें वहाँ भी जाना चाहिए ना ख्याल करने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने
2: जी,
1: बिल्कुल बच्चों के ऊपर थोड़ा चेकआउट होना चाहिए ताकि बच्चों की निगरानी हो सके सही से, और उनको थोड़ी सी मॉरल सपोर्ट भी मिल जाए, है ना जी?
2: हाँ जी सर जी।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सुनवा रहे हैं दूल्हे राजा फिल्म का गीत।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। हेलो जी नमस्कार जी, हम बहुत बढ़िया हैं, अपना शुभ नाम बता दीजिए जी। किशोरी लाल जी, हम तो आपकी आवाज़ पहचान जाते हैं लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो भी आपका नाम जानना चाहते हैं ना जी। जी जी, और कैसे हैं आप? चलिए, गर्मी का मौसम है, देखिए गर्मी भी होना लाजमी है और जब सर्दी आएगी तब सर्दी हो जाएगी जी, तो ये चला रहता है धूप और छांव।
1: सब ठीक है ना
0: जी।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। हेलो
1: सर,
0: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम।
1: मेरा नाम अजीत सिंह है जी, मैं गांव हरसन से बोल रहा हूँ जी।
0: जी अजीत सिंह जी हरसन गांव से बोल रहे हैं, हमारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं अजीत जी।
1: हम सुनते रहते हैं, कोशिश भी करते हैं कि हमारा फोन लग जाए, पर लाइन बिजी रहती है बहुत ना।
0: तो आज तो आपका फोन लग ही गया।
1: लग गया सर आज।
0: चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पहले भी लगाते रहते थे फोन आप।
1: मैं लगा था जी बहुत।
0: जी, तो ये पहली बार लगा या इससे पहले भी लगा था कॉल आपका?
1: नहीं, पहले मैं लगा था आपके, आपको फोन करता था, लेकिन अब लगते नहीं, अब लाइन बहुत बिजी हो गई है ना।
0: जी,
1: हाँ जी, हाँ जी सर।
0: चलिए, आप जैसे बहुत सारे श्रोता हैं और उनका प्यार है और सभी कोशिश करते हैं, लेकिन वही है ना जी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: नहीं होती है जी, कभी ना कभी।
0: बिल्कुल, कभी ना कभी सफलता जरूर मिल

0: जाती है
1: जी सर, जी सर।
0: जी। तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
1: सर अली बाबा 40 चोर का जी।
0: जी, अली बाबा 40 चोर फिल्म का गीत आपको सुनवा देते हैं। और यूं ही आकाशवाणी हमीरपुर के साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हमीरपुर। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी
0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार जी।
1: मैं कठुआ से बोल रहा, सुरजीत सिंह जी।
0: जी सुरजीत सिंह जी, हमारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं आप भी।
1: हाँ जी अनूप जी, जैन आपका नाम अनूप है जी।
0: बिल्कुल।

0: बिल्कुल जी, मेरा नाम अनूप है, आपका बहुत
1: हाँ
0: बहुत
1: मैं तो
0: स्वागत
1: आपका
0: करते
1: बहुत
0: हैं।
1: प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, मैं आवाज बड़ी अच्छी है आपकी।
0: धन्यवाद,
1: आप
0: आपका
1: कहाँ के
0: प्रेम
1: रहने वाले?
0: है।
1: कांगड़ा के रह नहीं कांगड़ा कांगड़ा के रहने वाले सर की हमीरपुर के ही?
0: मैं यहीं से हूँ, हमीरपुर से ही, हिमाचल से।
1: अच्छा,
0: जी
1: ठीक है
0: जी
1: सर।
0: जी
1: कोई
0: जी
1: कोई और फोन लग गया मेरे, सुना दो अच्छा सा गीत कोई बढ़िया सा, फिर मैं नाम तो मैं जानता नहीं, अच्छा सा अपनी मर्जी से अच्छा सा बढ़िया गीत सुना दो
0: मैं
1: सर।
0: बता देता हूँ आपको, फिल्में हमारे पास, फिल्में बची हैं। अर्थ फिल्म है,
1: हाँ
0: दिल
1: जी,
0: देके देखो फिल्म है, गर्व है, कल आज और कल है।
1: दिल देख के देख लो उसको, दिखा दो सर।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने फोन किया, आपको सुनवा रहे हैं आपकी मनपसंद
1: मैं
0: फिल्म
1: तो
0: से
1: बहुत
0: गीत।
1: आपको याद करता हूँ सर, आप लगा फोन, आपके साथ बात हो गई सर, ठीक है
0: चलिए,
1: सर।
0: आप सबका स्नेह है, प्रेम है, यूं ही आकाशवाणी हमीरपुर के साथ बना रहे। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: हेलो हेलो जी, आपका स्वागत है लाइव फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने में। हेलो लाइव फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं शांति स्वरूप बोल रहा हूँ जी,
0: शांति स्वरूप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं शांति स्वरूप जी?
1: भाटी से, गांव भाटी से ही,
0: गांव भाटी, और जिला कौन सा हुआ आपका ये?
1: हमीरपुर जी।
0: हमीरपुर में। जी जी
1: हाँ
0: जी
1: जी सर,
0: हमारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं शांति स्वरूप जी आप।
1: सुनते रहते हैं सारे प्रोग्राम, सुनते रहते हैं। फोन ही आपका लगता है सर, फोन कैसे लग गया अभी
0: चलिए,
1: ये तो।
0: आपको शुभकामनाएं, आपका फ़ोन लग गया प्रोग्राम में। देखिए, बहुत सारे आपके तरह ही हमारे जो श्रोता हैं उनका प्रेम है, स्नेह है,
1: हाँ
0: सभी
1: जी, हाँ
0: जो हैं
1: जी,
0: वो कोशिश करते रहते हैं फ़ोन लगाने की।
1: हाँ जी सर,
0: जी, तो आज कौन सी फिल्म गीत सुनवाएं आपको?
1: ये जो बची है वो सुना दो। हाँ
0: हाँ चलिए, हमारे पास अब बची हुई है अर्थ फिल्म है, गर्व है, कल आज और कल है। अर्थ फिल्म का सुना दूँ?
1: सुना दो, कोई भी सर, अच्छा सवाल सुना दो।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन
1: शुक्रिया,
0: किया,
1: धन्यवाद सर,
0: धन्यवाद आपका।
1: शुक्रिया।

0: हेलो
1: हाँ जी, हेलो।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम लाइव फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने में। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम यहीं से बोल रहे हैं, खरवार से, हमीरपुर
0: जी, आपका
1: से,
0: शुभ नाम?
1: बीना।
0: बीना जी, खरवाड़ से। हमारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं आकाशवाणी हरिपुर के आप?
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: जी, कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं आपको?
1: सभी जी अच्छे लगते हैं।
0: सभी। और देखिए, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है तो जल्दी से
1: हाँ
0: बता
1: जी, हाँ जी,
0: दीजिए कौन सी फिल्म गीत सुनवाएं आपको।
1: कौन सी बची है अभी?
0: अब हमारे पास बची है जी गर्व है और कल, आज और कल है।
1: कल, आज और कल, यही सुनना था। कब से ट्राई कर रहे हैं फोन आपका।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।

मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू।

श्रोतो, इसी के साथ आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने अब यहीं पर संपन्न होता है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण

समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।

0: में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन

0: के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: एप्लीकेशन लॉन्च इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट

0: पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधे उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी

0: क्या कहिए, अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुश्तबा विद द न्यूज एट 9।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक।

0: घर पर लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
2: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
0: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
0: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
3: लीजिए सुनिए दस्तक फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अंतिम पेशकश जुर्माना फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म जुर्माना में सुना। आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे ख़ासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में, आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात ये थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूज़िक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूज़िक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं, एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में, मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हमें गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक ऊपर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है, उसकी इच्छा होती है गाने की, तो वो अपनी आवाज़ में गाता है। लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंदा का गाना सुनूँ तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था। तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का, मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था, लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी। तो वहाँ लोगों को, तो पड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे, और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे। और मुझे पता भी नहीं था, और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा। अरे सच

सपनों से, तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहां भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता ये। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने लाके डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये हैं सुदेश भोसले, इन्होंने गाया है आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने सुदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो दोस्त अनूप।

एक ही फिल्म से, और आज की हमारी फिल्म रहेगी दोस्तों अभिमान। जी हाँ, 1973 में आई फिल्म अभिमान। अभिमान फिल्म के बारे में आज आपसे बातें करेंगे और आपको सुनवाएंगे उसी फिल्म के गीत। दोस्तों, सन 1973 में आई फिल्म अभिमान हिंदी भाषा की संगीत में नाट्य फिल्म। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, असरानी और बिंदु हैं। इसे ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशित किया था और मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित और सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाए गए सचिन देव वर्मन द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस फिल्म को संभवतः इसके गानों के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। और इस फिल्म के गीत एक से बढ़कर एक रहे हैं अपने ज़माने के, और बिल्कुल उन गीतों के ज़रिए इस फिल्म को याद किया जाता है, अभिमान फिल्म को। फिल्म ने उस समय प्रकाशित बॉलीवुड व्यापार पत्रिका के अनुसार बॉक्स ऑफिस पर औसतन कारोबार किया और जया बच्चन ने अभिमान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी जीता था। तो चलिए, फिल्म का एक बेहतरीन गीत आपके लिए हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पे।

कार्यक्रम में की फिल्म से इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। आज की हमारी फिल्म है अभिमान। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, इस फिल्म को इसके गानों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में बेहतरीन नगमे इस फिल्म के रहे हैं। सचिन देव बर्मन ने इसे संगीतबद्ध किया है और इस फिल्म ने अपने ज़माने में बहुत ही सुपरहिट गाने दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जया बच्चन ने अभिमान फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आथिफ सुरती के अनुसार ये फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो दिग्गजों सितार वादक रविशंकर और सुरबहार वादक अन्नपूर्णा देवी के मुश्किल भरे वैवाहिक जीवन पर आधारित रही है। हालांकि लेखक राजू भरत का कहना है कि मुखर्जी ने फिल्म की कहानी गायक किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता के जीवन पर आधारित रखी थी। आगे भी हम इस फिल्म के बारे में यूं ही आपसे चर्चा जारी रखेंगे, बताते रहेंगे इस फिल्म के बारे में। फिलहाल एक बार फिर सुनवा देते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। आज की हमारी फिल्म है अभिमान। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, फिल्म की कहानी गायक किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता के जीवन पर आधारित रखी गई थी। 1954 की फिल्म ए स्टार इज बॉर्न को भी एक अस्पष्ट प्रभाव से बताया गया था। 1977 की बंगाली फिल्म, जिसमें उत्तम कुमार और सुप्रिया देवी ने एक्टिंग की थी, इस पर भी इस फिल्म का असर माना जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया, इस फिल्म का निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। लेखक भी ऋषिकेश मुखर्जी थे। निर्माता थे इस फिल्म के सुशीला कामत, पवन कुमार, अभिनेता अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, असरानी, बिंदु, ए के हंगल, दुर्गा खोटे। और संपादन किया था दास धेमकड़े ने। संगीतकार थे सचिन देव वर्मन। और इस तरह से जो था वो 27 जुलाई 1973 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। आगे इस फिल्म की कहानी पर भी हम बिल्कुल आपकी नज़रें लेकर जाएंगे, आपको बताएंगे कि इस तरह से इस फिल्म की कहानी शुरू होती है, क्या कुछ रहता है इस फिल्म में। फिलहाल एक और गीत इस फिल्म का आपके लिए भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर।

एक ही फिल्म से इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। आज की हमारी फिल्म है अभिमान। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था इस कहानी के बारे में, और बिल्कुल जी कहानी के बारे में ही हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सुबीर कुमार यानी अमिताभ बच्चन एक पेशेवर गायक है जो समृद्धि की ओर अग्रसर है। उमा यानी जया भादुरी से मिलने तक उसकी शादी करने का कोई विचार नहीं था। उमा गांव में दुर्गा मौसी दुर्गा खोटे के साथ रहती है और उससे शादी कर मुंबई लाकर उसकी गायकी का पेशा शुरू करना चाहती है। इसी बीच उसकी गायकी डगमगाती रहती है, उमा की उभरती है और अपने पति के साथ वह प्रसिद्ध गायक बनती है। इस पर सुबीर उमा से द्वेष करने लग जाता है और उनके वैवाहिक जीवन में तनाव हो जाता है। और इस तरह से उन दोनों में थोड़ी बहुत अनबन बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि उमा जो थी वो सुबीर से आगे निकल जाती है क्योंकि वो उससे थोड़ी प्रसिद्धि ज़्यादा हासिल कर लेती है। इस पर सुबीर उमा से द्वेष करने लग जाता है और धीरे धीरे एक संवेदनात्मक मोड पर दोनों के बिछड़ने के बाद उमा जो है वो काफ़ी तनाव में चली जाती है। और फिर होता क्या है, क्या सुबीर अपने अभिमान व द्वेष पर विजय पाता है या फिर दोनों वो मिल पाते हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म जिसका नाम है अभिमान। इसी फिल्म का एक और गीत आपकी रेडियो सेट्स पर हम भेज रहे हैं।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, आज की हमारी फिल्म है अभिमान, और अभिमान फिल्म के बारे में हमने आपको बता दिया कैसे दो पेशेवर गायकों की कहानी है जो कि समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं, और समृद्धि पाने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं, और आपस में ही उन दोनों की प्रतिस्पर्धा हो जाती है, कंपटीशन हो जाता है, और उसके उपरांत बहुत कुछ रहता है। यही कहानी का ट्विस्ट है, और यही जो है वो कहानी की मैं आप सबकी जो है वो रुचि भी बनाए रखती है। और जैसा कि हमने आपको बता दिया, फिल्म का निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने, और इस फिल्म के जो गीत थे उनमें से तेरे मेरे मिलन की रैना, बिना का माला गीत माला में जो है वो 16वीं पायदान पर रहा था, और गीत मीत ना मिले मन का ये 23वीं पायदान पर रहा था, और जो सभी गीत थे वो मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे, और सारा संगीत सचिन देव बर्मन द्वारा रचित था। और गीत आपने बिल्कुल बहुत सारे इस फिल्म के सुन लिए। सचिन देव बर्मन को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था, और इसके साथ साथ ही जया बच्चन को भी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला था। और बिल्कुल दोस्तों, इस जो फिल्म में आपको बता दें कि जो गीत रहे हैं वो तो बिल्कुल शानदार रहे हैं, और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म में तेरे मेरे मिलन की रैना गीत अंत में दोनों का भावनात्मक मिलन दिखाया गया है इस गीत के जरिए। तो चलिए ये गीत भी आपको सुनवा देते हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर रात्रि की 10:30 हुए हैं। लीजिए, सुनिए रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें।

चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो दोस्त अनूप। जरूरी तो नहीं मोहब्बत लफ्जों में बयान हो, जरूरी तो नहीं मोहब्बत लफ्जों में बयान हो, क्या सच में मेरी आंखें तुम्हें कुछ नहीं कहती।

बहुत ही खूबसूरत है तेरे एहसास की खुशबू कि बहुत ही खूबसूरत है तेरे एहसास की खुशबू, जितना भी सोचते हैं उतना ही महक जाते हैं।

चांदनी रातों का यह हसीन सफर आप तय कर रहे हैं अपने रेडियो हम सफर अनूप के साथ। कि लगता है मेरा खुदा मेहरबान है मुझ पर, लगता है मेरा खुदा मेहरबान है मुझ पर, मेरी दुनिया में तेरी मौजूदगी यूं ही तो नहीं,

कि इश्क की गहराइयों से खूबसूरत क्या है। मैं हूं, तुम हो, और किसी चीज की जरूरत क्या है।

चांदनी रातें, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। मैं चाहता हूं तुझे यूं ही उम्र भर देखूं, कोई तलब ना हो दिल में तेरी तलब के सिवा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100।

101.8 MHz पर रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। प्रातः 5:55 पर पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।